मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का

0: करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। परिश्रम लक्ष्य तक पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है।

ये चंचल मन, हे प्रभु आपका गुणगान करता रहे, ये जिह्वा राम नाम की रटना करती रहे, यही विनय है, यही बारंबार विनय है।

सत्कर्म ही चरित्र का निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। हे प्रभु, आपके मार्ग पर हम ईमान

0: इस भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। चिंतन में आइए सुनते हैं दार्शनिक सुकरात के विचार।
1: दार्शनिक सुकरात के विचारों में नीति का स्थान प्रमुख था। वो नैतिक प्रश्नों को प्रमुख समझते थे। उन्होंने भद्र और अभद्र की नींव बुद्धि पर रखी। जो भद्र है वो सबके लिए भद्र है, जो अभद्र है वो सभी के लिए अभद्र है। यहाँ व्यक्ति की पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं। जिस पुरुष को भद्र का ज्ञान न हो वो भद्र कर ही नहीं सकता। न्याय वही कर सकता है जिसे न्याय के स्वरूप का ज्ञान हो। जिस पुरुष को भद्र का ज्ञान हो उसके लिए संभव ही नहीं कि वो भद्र न करे। कोई मनुष्य जान

0: सोचकर बुरा काम नहीं करता। सुकरात ने यही नहीं कहा कि सदाचार ज्ञान पर आधारित है, अपितु ये भी कि वृत्त ज्ञान ही है। वृत्त के संबंध में सुकरात ने यह भी कहा कि वृत्त एक ही है। हम अक्सर वृत्तों का जिक्र करते हैं, सत्य भाषण, न्याय, साहस, संयम आदि। वो कहते हैं कि ये विविध वृत्त नहीं, एक ही वृत्त के विविध रूप हैं। वास्तव में सदाचार सत्य ज्ञान ही है। जब हम किसी पुरुष को साहसी कहते हैं तो हमारा अर्थ प्रायः यही होता है कि वो पुरुष आपत्ति आने पर या यह निश्चय कर सकता है कि उसे कितनी शक्ति का और किस रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस निश्चय के करने पर प्रयोग तो आप ही हो जाता है। इस निश्चय के अभाव में उसका काम वास्तव में साहस होता ही नहीं। सुकरात ने सदाचार और ज्ञान को एक रूप बताया। इसका अर्थ यह है कि अन्य विद्याओं की तरह सदाचार भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। उनके अनुसार ज्ञान के कई स्तर हैं। मैं एक घोड़े को देखता हूं, उसका कद विशेष कद है, उसका रंग विशेष रंग है। उसकी विशेषताओं के कारण मैं उसे अन्य घोड़ों से अलग करता हूं। मेरा ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान है और यह ज्ञान किसी विशेष पदार्थ का बोध है। जिस घोड़े को मैंने देखा है उसके न मौजूद होने पर भी उसका चित्र मेरी मानसिक दृष्टि में आ जाता है। किसी विशेष घोड़े को देखने का या उसका मानसिक चित्र बनाने के अतिरिक्त मेरे लिए यह भी संभव है कि मैं घोड़े का चिंतन करूं। ऐसे चिंतन में किसी विशेष रंग का ध्यान नहीं करता, क्योंकि ये रंग सभी घोड़ों का रंग नहीं। मैं ऐसे विशेषणों का ध्यान करता हूं जो सभी घोड़ों में पाए जाते हैं और सब के सब किसी अन्य पशु जाति में नहीं मिलते। ऐसे चिंतन का उद्देश्य घोड़े का प्रत्यय निश्चित करना है। ऐसे प्रत्यय को शब्दों में व्यक्त करना घोड़े का लक्षण करना है। उनका प्रमुख काम प्रत्ययों का स्पष्टीकरण था। सदाचार क्या है, दूरदर्शिता क्या है, न्याय क्या है, इन्हीं विषयों पर उन्होंने कहा और सुना। वो प्रत्यय या लक्षण का जन्मदाता है। लक्षण का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इसका एक ही उपाय है। घोड़े के प्रत्यय को निश्चित करने के लिए हम अनेक घोड़ों को देखते हैं और उनके असमान गुणों को एक ओर रखकर समान गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न्याय का लक्षण करने के लिए ऐसे विविध कर्मों का चिंतन करते हैं जिन्हें न्याय युक्त स्वीकार किया जाता है। इस कर्म को तर्कशास्त्र में आगमन कहते हैं। जैसा अरस्तु ने कहा था, सुकरात लक्षण और आगमन दोनों का जन्मदाता है और इसलिए उसका स्थान चोटी के दार्शनिकों में है।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे दार्शनिक सुकरात के विचार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर सुनिएगा विनय सिंह की वार्ता, विषय होगा डेयरी प्रबंधन हेतु सुझाव। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आपको सुनवाएंगे वाणी अग्रवाल की वार्ता आंखों के लिए पोषण का महत्व विषय पर। 7:31 पर प्रसारित होगा स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। 8:45 पर कार्यक्रम गीतांजलि में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। गीत मंजूषा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे पुरानी फिल्मों से तराने 9:25 पर।

9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुनेंगे ज्वाला प्रसाद और साथियों के गाए लोक भजन। 10 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर सरिता। इस कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। 10:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। 11 बजे कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा गीतकार कैफी आजमी पर। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत केंद्रित होगा जल जीवन दायक है इसे व्यर्थ न करें विषय पर। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कार्यक्रम नए तराने प्रसारित होगा दिन में 12:30 पर। 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार में चर्चा आज के दौर में मेंटल हेल्थ की अहमियत विषय पर। मेरी माटी मेरा देश।

में 12:30 पर, 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार में चर्चा आज के दौर में मेंटल हेल्थ की अहमियत विषय पर। मेरी माटी मेरा देश क्रम में आप जानेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। मुझे कुछ कहना है क्रम में बात होगी फोन फुल दिल इम्पिटी क्यों। बात पते की क्रम में जानेंगे खुद को समय देना भी है जरूरी। साथ ही आप सुनिएगा डॉक्टर कविता रायजादा की कहानी विधि का विधान। कार्यक्रम घर संसार का प्रसारण समय रहेगा दिन में 1:15। 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे आशा भोसले के गाए गीत और गजल। 2:30 पर प्रसारित होगा उपशास्त्रीय संगीत। 2:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 3 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीत गुंजन। शाम 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी में चर्चा का विषय होगा जैसा देश वैसा भेष। साथ ही आप सुनेंगे अरुण मिश्रा की वार्ता, विषय होगा भारत निर्माण में स्टार्टअप का योगदान। आइए जाने क्रम में आपको बताएंगे अटाकामा मरुस्थल के बारे में। मजाक को मजाक ही रहने दें पर बात होगी क्रम जीने की कला में। साथ ही आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। शाम 6 बजे कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा के विषय होंगे गर्मियों में पशुधन की देखभाल और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता क्रम में प्राकृतिक खेती से लाभ विषय पर प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह से डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत। मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी डिजिटल युग में महिलाएं विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे ज्योति श्रीवास्तव की कहानी सौदा। कार्यक्रम मजदूर मंडल का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी की वार्ता हम सब सुमन एक उपवन के विषय पर। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। 8 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम एक और अनेक। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर।

प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विनय सिंह की वार्ता। विषय है डेयरी प्रबंधन हेतु सुझाव।
1: प्रिय किसान भाइयों, डेयरी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ आसानी से कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। डेयरी के उचित प्रबंध के लिए कुछ बातें मुख्य होती हैं जिन पर किसान भाई अवश्य ध्यान दें, जैसे पशुशाला की व्यवस्था। डेयरी व्यवसाय में पशुशाला की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, इसलिए पशुशाला के लिए स्थान का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अच्छे जल का पर्याप्त मात्रा में होना, गड्ढों और गहरे स्थान की भूमि को कभी न चुने, अच्छी उपजाऊ भूमि पर पशुशाला न बनाएं, पशुओं के लिए चरागाह तक जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए, मुख्य सड़क तक पहुंचने की योजना बनानी चाहिए, पशुशाला को ऐसे स्थान पर बनाएं जहां जल निकास अच्छा हो, जहां तक संभव हो पशुशाला का निर्माण ऊंचे स्थानों पर ही हो। इससे कई लाभ होते हैं, जैसे भवन देखने में अच्छे लगेंगे,

सफाई ठीक से हो जाएगी, नमी से बचाव हो सकता है। भवन अधिक समय तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं और टिकाऊ रहते हैं। पाठशाला इस प्रकार से बनाएं कि उसमें धूप का प्रवेश हो सके। यदि पाठशाला की लंबाई उत्तर दक्षिणी दिशा में रखी जाए तो यह संभव हो सकता है। धूप को रोकने वाले वृक्षों को पाठशाला के पास से हटा दें। पाठशाला देखने में सुंदर लगनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अधिक पैसा खर्च न करें। किसी भी फार्म पर डेयरी खलियान का होना अत्यंत आवश्यक है। पशु व्यवस्था को उचित रूप से चलाने के लिए, अधिक लाभ व सुविधा प्राप्त करने के लिए डेयरी खलियान के बनाने में कई बातों पर विचार करना चाहिए। अच्छे खलियानों के होने से सस्ते दामों पर दूध का उत्पादन किया जा सकता है और श्रम को भी दक्षता से प्रयोग में लाया जा सकता है। खलियान कई प्रकार के होते हैं। साधारणतः खलियान एक मंजिल के, दो मंजिल के, तहखाने वाले, गोल और खुले होते हैं। एक मंजिल के खलिहान में गाय या भैंस को पंक्तियों में रखा जाता है। इसकी चौड़ाई अधिक होती है। इसमें हवा का आवागमन और प्रकाश का प्रबंध अच्छा रहता है, लेकिन जाड़े के दिनों में यह अधिक ठंडा रहता है। दो मंजिल के खलिहान में पशु को नीचे फर्श पर रखा जाता है और ऊपर की दूसरी मंजिल में पशु के चारे को रखने का प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार के खलिहान पशुओं के लिए जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, लेकिन इसमें प्रकाश और हवा के आवागमन की कमी रहती है। तहखाने वाले खलियान प्राय पहाड़ों में बनाए जाते हैं, जो आदर्श नहीं माने जाते। यह दो तीन मंजिल का बनाया जाता है। पहली मंजिल जमीन के नीचे बनाई जाती है, इसलिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। गोल खलियान के निर्माण में आयताकार खलियान की अपेक्षा 25% लागत कम आती है। यह 40 गाय बांधने का प्रबंध करना है तो आयताकार खलियान की अपेक्षा इसमें 22% कम दीवारें और 34 से 58% तक कम सामान लगता है। साइलो पशुओं के चारे खाने का स्थान बीचों बीच बनाया जाता है और इसके चारों ओर गाय को बांधने का प्रबंध किया जाता है। खुले खलियान आकार में बड़े और खुले होते हैं। इनके ऊपर एक छत बनाई जाती है। गाय को पूरी स्वतंत्रता होती है। इस खलियान में चारा डाल दिया जाता है। पशु अपनी इच्छा अनुसार उसे खाता है। खलियान में पशुओं का विन्यास, खलियान के अंदर गाय का विन्यास उनकी संख्या पर निर्भर करता है, जो दो प्रकार का होता है। जब गाय की संख्या 10 या इससे कम होती है, तब इन्हें एक ही पंक्ति में रखते हैं। जब गायों की संख्या 10 से 40 या इससे अधिक होती है, तब इन्हें दोहरी पंक्ति में रखते हैं। प्राय एक खलियान में 80 से 100 गायों को रखा जाता है। दोहरी पंक्ति पद्धति में गाय को दो प्रकार से खलियान में रखा जाता है। आमने सामने वाली पद्धति। आमने सामने वाली पद्धति से कई लाभ हानि होते हैं। लाभ ये होते हैं कि गाय के पिछले भाग पर प्रकाश अधिक रहता है, अच्छे प्रकाश में अच्छा कार्य किया जाता है और दूध दुहने वाला यह देख सकता है कि यह साफ है या नहीं। गाय के लिए एक ही समय में दोनों ओर केंद्रीय मार्ग द्वारा चारे का वितरण किया जा सकता है। अन्य पद्धति की अपेक्षा इसमें कम स्थान लगता है। हानि इसमें यह है कि गोबर हटाने के लिए श्रम व कार्य अधिक करना पड़ता है। गाय में बीमारी फैलने का भय रहता है। गाय के गोबर से खलिहान की दीवारें खराब हो जाती हैं। गाय को ताज़ी हवा कम मिलती है। दूसरी पद्धति पूंछ से पूंछ वाली होती है। इसके भी कई लाभ व हानि होते हैं। लाभ ये है कि दूध निकालने व सफाई क्रियाएं एक ही स्थान पर की जाती हैं। गाय में बीमारी फैलने का भय नहीं रहता, क्योंकि वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में सांस लेती हैं। गोबर के द्वारा दीवारें खराब नहीं होती और उसे हटाने में श्रम भी कम व्यय होता है। दूध दुहते समय सभी गाय की देखभाल एक ही समय में एक ही मनुष्य द्वारा की जा सकती है। हानि इसमें यह है कि गाय को चारा बांटने में अधिक श्रम और समय लगता है और एक ही बार में दोनों ओर की गायों को चारा पानी एक साथ नहीं बांटा जा सकता। सफाई और दूध निकालने में प्रकाश ठीक नहीं मिलता। दूसरी चीज़ यह है कि उन्नत किस्म के पशुओं के क्रय की व्यवस्था। पशुशाला की उचित व्यवस्था हो जाने पर यह आवश्यक है कि इसमें अच्छी किस्म के दुधारू पशु रखे जाएं, ताकि उत्पादन अधिक मिले। पशुओं को क्रय करने के लिए कई स्थान हैं, जैसे सैन्य डेयरी फार्म, राजकीय डेयरी फार्म, सहकारी डेयरी फार्म, हाटपेट या पशु मेला एवं निजी फार्म। इन स्थानों से अच्छी किस्म के दुधारू पशुओं को ही किसान भाई क्रय करें, क्योंकि एक अच्छी नस्ल और सामान्य नस्ल के

0: को रखने में फार्म पर होने वाले व्यय में कोई खास फर्क नहीं होता, जबकि उत्पादन में काफ़ी अंतर होता है। पशुओं के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था, अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पशुओं की खिलाई पिलाई ठीक प्रकार से हो, उनको भरपेट संतुलित आहार दिया जाए जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा, दाना, खनिज पदार्थ, विटामिन्स एवं स्वच्छ व ताज़ा पानी पीने को दिया जाए। ऐसा होने से उत्पादन तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही साथ पशुओं में कुपोषण से होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। पशुओं की देखरेख एवं बीमारियों से उपचार, एक सफल डेयरी व्यवसाय को चाहिए कि वो नियमित रूप से पशुशाला की सफाई करे, पशुओं को समय पर चारा दाना पानी, उनके व्यायाम एवं स्नान आदि की व्यवस्था करे, पशुओं में लगने वाले बाह्य परजीवी जैसे जूं कलेली आदि को साफ करते रहें, पशुओं में लगने वाली बीमारियों से बचने के लिए पशुओं को समय से टीकाकरण एवं उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई उक्त बातों को ध्यान में रखकर डेयरी व्यवसाय आरंभ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अपनी आर्थिक स्थिति इस व्यवसाय के माध्यम से मजबूत कर सकेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विनय सिंह की वार्ता, विषय था डेयरी प्रबंधन हेतु सुझाव। इसके साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध

0: पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged

0: आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे को दस्त लग जाएं, तो उसे अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। विटामिन ए की कमी से आंखों के आगे का पर्दा यानी कॉर्निया सूख जाता है और इसमें जख्म होने से आंखों की रोशनी जा सकती है। 4 महीने के पश्चात स्तनपान के साथ साथ शिशु को दाल सब्जी, केला, सूजी की खीर इत्यादि भी देना शुरू कर दें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो उसे घर में बना हुआ सभी खाना देना शुरू कर दें। बच्चे को फल, हरी साग सब्जियां, गाजर, अंडा, दूध अवश्य दें। जहां तक हो सके आज के युग के फास्ट फूड आदि खाने से बच्चे को रोकें। अगर बच्चा इसी से पेट भर लेगा तो आवश्यक तत्व उसके शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों में कई बदलाव आते हैं, मोतियाबिंद, पर्दे की बीमारियां इत्यादि होने लगती हैं। इन सब से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। यह चीजें हरी साग सब्जियों एवं ताजे फलों में पाई जाती हैं। इसलिए वयस्क लोगों को भी दिन में 2-3 बार इसका सेवन करना चाहिए। तंबाकू एवं शराब के सेवन से विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे आंखों की नसें तथा पिछले पर्दे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इनके सेवन से परहेज करें। कई भाई बहन आजकल डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। यह बीमारियां आंखों के भीतरी पर्दे को क्षति पहुंचाती हैं। डायबिटीज होने के 15-20 वर्ष बाद 80% लोगों की नजर में फर्क पड़ने लगता है। आधुनिक इलाज एवं इंसुलिन के प्रयोग से मधुमेह के मरीजों की उम्र काफी बढ़ गई है। आंखों की नियमित जांच, मधुमेह का सही इलाज एवं उपचार तथा खान पान में परहेज बहुत जरूरी है। मधुमेह में मीठे खाद्य पदार्थ, शक्कर, मिठाई तथा मीठे फलों का पूरी तरह परहेज करना चाहिए। वजन को नियमित करने के लिए चिकनाई कम से कम लें तथा उचित व्यायाम जरूर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप होने पर शरीर का वजन कम करना चाहिए तथा उचित इलाज के साथ साथ नमक का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। संतुलित आहार ना लेने से मोतियाबिंद कम उम्र में ही आ जाता है। खून की कमी जो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, इसमें भी मोतियाबिंद कम उम्र में देखा जाता है। खून की कमी से पर्दे पर भी असर पड़ता है और नजर कम हो जाती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी खुराक पर नियमित ध्यान दें ताकि हमारी आंखें आजीवन स्वस्थ रहें।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता। विषय था आंखों के लिए पोषण का महत्व। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश का गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच

0: एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित

0: करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहाँ से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:31 मिनट 35 सेकंड हुए हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास में सबसे पहले सुनिए खोए हुए व्यक्तियों की सूचनाएं। क्षेत्राधिकारी मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार गेंदालाल पुत्र कोमल सिंह निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली मैनपुरी

गेंदालाल पुत्र कोमल सिंह निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली मैनपुरी 27 नवंबर 2025 से घर से लापता है। रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, कद 5 फुट 5 इंच है, आयु 75 वर्ष है। श्रोताओं, इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी को सूचित करें।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: क्षेत्राधिकारी मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार लक्ष्मी पत्नी राम बहादुर निवासी तखरौ थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी 31 मार्च 2026 से घर से लापता है। आयु 30 वर्ष है। कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा अंडाकार है। लक्ष्मी सूट पहने हुए हैं। श्रोताओं, इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी को सूचित करें।

एक और सूचना सुनिए। क्षेत्राधिकारी मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी मुस्कान पुत्री इलाही बख्श निवासी रीछपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी 26 मार्च 2026 से घर से लापता है। आयु 20 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा अंडाकार है। ये मेहंदी कलर का सूट पहने हुए है। मुस्कान के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी को सूचित करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों की सूचनाएं। कार्यक्रम आसपास अभी जारी है, आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के बाद सुनिए कुछ स्थानीय सूचनाएं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गन्ना अधिष्ठान और चीनी अधिष्ठान के अधीन गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 7 जुलाई से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। कुल 1182 पदों में 1000 पद सामान्य चयन और 182 पद विशेष चयन के लिए निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का पर्चा लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा दोबारा होगी।

अपंजीकृत डीलरों पर रोक लगाने को साथी पोर्टल से बीज का लेन देन होगा। इस पोर्टल से बीज की बिक्री की जाएगी। ये जानकारी जिला कृषि अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बीज व्यवसाय को डिजिटल पारदर्शी एवं ट्रेसेबल बनाने को साथी पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, स्थानांतरण एवं विक्रय की समस्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से होगी। प्रदेश एवं जनपद के कृषि विश्वविद्यालयों तथा अभिजनक बीज उत्पादक संस्थानों द्वारा अभिजनक बीज का उत्पादन एवं विक्रय साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने विधि और बीएड पाठ्यक्रमों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 18 मई तक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रक्रिया समर्थ के माध्यम से होगी। बीएड एलएलबी बीए एलएलबी के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2025-27 एवं द्वितीय वर्ष सत्र 2024-26 के छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। एलएलबी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष सत्र 2025-26 और बीए एलएलबी के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 2025-26 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 मई तक चलेगी। इस वित्तीय वर्ष में अगर आपने गृहकर जमा नहीं किया है तो 10% की छूट के साथ अब जमा कर सकते हैं। 10% की छूट आपको 31 जुलाई तक मिलेगी। इसका प्रस्ताव नगर निगम के सदन में पार्षद ने रखा था जो मंजूर हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम प्रशासन ने 118 करोड़ रुपए के गृहकर की वसूली की थी। वहीं 21 मई को बजट का सदन होगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इससे पूर्व 14 मई को कार्यकारिणी की बैठक होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम का गृहकर वसूली का लक्ष्य 115 करोड़ रुपए था। इसके सापेक्ष निगम प्रशासन ने 118 करोड़ रुपए की वसूली की थी। निगम के इतिहास में पहली बार लक्ष्य से अधिक राजस्व की वसूली हुई थी। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक गृहकर का लक्ष्य तय नहीं हुआ है। वसूली का कार्य धीमी गति से चल रहा है। सोमवार को निगम के सदन में गृहकर में 10% की छूट का प्रस्ताव रखा गया था। सदन ने इसे मंजूर कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जुलाई तक 10% छूट मिलेगी। 10% की छूट का प्रस्ताव पास हो गया है। गृहकर 4 जोनल कार्यालयों में जमा कराया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मई को बजट को लेकर कार्यकारिणी की बैठक और 21 मई को निगम का सदन होगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। 22 मई को काजीपेट पुणे निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। 22 कोच की ट्रेन आगरा कैंट से शाम 5 बजे गुजरेगी। काजीपेट निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन 25 मई को होगा। विजयवाड़ा फरीदाबाद एक्सप्रेस का संचालन 22 मई और फरीदाबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस का संचालन 25 मई को होगा। भुसावल निजामुद्दीन

निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन 22 मई और निजामुद्दीन भुसावल एक्सप्रेस का संचालन 26 मई को होगा। लोकमान्य तिलक मुंबई पटेल नगर एक्सप्रेस का संचालन 22 मई और पटेल नगर लोकमान्य तिलक मुंबई का संचालन 24 मई को होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने पहले कॉरिडोर में मेट्रो के संचालन के लक्ष्य में बदलाव किया है। यह निर्णय मंगलवार को टीम के निरीक्षण के बाद लिया गया। आईएसबीटी स्टेशन से मनकामेश्वर स्टेशन बिजलीघर चौराहा तक जुलाई के बदले जून में मेट्रो का संचालन होगा। वर्तमान में अप और डाउन लाइन में मेट्रो के परीक्षण चल रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन होने से लोगों को फायदा होगा। वहीं दूसरे कॉरिडोर में भी मेट्रो ट्रैक के बिछाने पर ध्यान दिया जा रहा है। टीटीआई मॉल फतेहाबाद रोड से लेकर सिकंदरा तिराहा तक मेट्रो का पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा है। इसमें 7.5 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक है। टनल निर्माण में देरी के चलते यूपीएमआरसी ने जुलाई में 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो के संचालन का लक्ष्य रखा था। यह ट्रैक आईएसबीटी स्टेशन से मनकामेश्वर स्टेशन तक है। मंगलवार को यूपीएमआरसी की टीम ने निरीक्षण किया। संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क ने बताया कि संबंधित स्टेशनों का कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। अप और डाउन लाइन में परीक्षण चल रहे हैं।

राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भारतीय भाषा समर कैंप 2026 का आयोजन बुधवार से किया जाएगा। 13 से 20 मई तक चलने वाले शिविर में विद्यार्थियों को प्रतिदिन भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा, इसके लिए कार्यक्रम जारी हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को शिविर के पहले दिन गतिविधि आधारित शिक्षण, फ्लैश कार्ड, चित्र सामग्री, उच्चारण अभ्यास व समूह गतिविधियां होंगी। ये तो थी स्थानीय सूचनाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड बी के 10 पदों की भर्ती निकाली है। ये नियुक्तियां सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में की जाएंगी। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 है। इस पद के लिए योग्यताएं इस प्रकार है: न्यूनतम 55% अंकों के साथ सांख्यिकी, अर्थमिति, गणित, गणितीय सांख्यिकी, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, इन्फॉर्मेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री हो, या न्यूनतम 55% अंकों के साथ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिस्टिक या संबंधित शाखा में स्नातकोत्तर हो। एससी एसटी वर्ग और दिव्यांगों के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री में न्यूनतम 50% अंक हों। वेतनमान है 78,450 से 141,600 रुपए। आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष हो। आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 850 रुपए एससी एसटी

और दिव्यांगों के लिए ₹100 देय है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। वेबसाइट है rbi.org.in। और कार्यक्रम में चलते चलते आइए सुनते हैं ये गीत।

इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी

0: किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा

0: संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

0: का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एक

0: एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं

0: हमारे नामानिगार से।
1: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। एन रंगसामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी ओहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज्म व जब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौकफ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज्म व जब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी की है जिसमें बहुत से फौरी इकदामात के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की किफायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उजराए आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने पीएनजी, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वजीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर जरूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वजीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने पीएनबी मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर खास तौर से जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि वज़रा, एमपी, एमएलए और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकाम जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियां मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बुहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था, जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाकये में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिवीजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदाद शुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदाद शुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताजातरीन अमन तजवीज को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्जाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाजे को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निजाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है।

0: अखबार इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इंकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबार की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह है, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मनसूबा जेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
1: खास खबरें, जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शियारी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मॉनसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं वंश फिल्म का गीत, एसपी वाला सुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तुमसा नहीं देखा फिल्म का युगल गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत लिया है मोहरा फिल्म से। इसे गाया है पंकज उधास और साधना सरगम ने। इंदिवर के गीत को संगीत दिया है वीजू शाह ने।

अभी आपने सुना प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मेहरबान फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में। रानी मलिक की शब्द रचना को संगीत दिया है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

इसके साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 9:15 होने को हैं। अब हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं जिले की हलचल।

0: आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन

0: को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गांव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देगा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
1: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से जिसमें निर्बाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। अब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
0: मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्यौरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया,
2: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। वाट्स पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है, ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है मिलिट्री के द्वारा किया जाएगा, फैगनक के द्वारा, तो आईडी मांगने पर आपको देना है।
0: तकनीकी सहयोग जोहत शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि यह वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कि कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
3: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
4: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। असानी रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई, तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस पंजीकरण शुद्धिकरण की व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को

0: मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गी ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है, साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: श्रोताओं, अभी आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुन रहे थे जिले की हलचल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं मेला फिल्म का गीत, शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज में। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीत दिया है नौशाद ने।

अभी आप सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश के गीत को संगीत दिया था सलील चौधरी ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मैम दीदी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। शैलेंद्र की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

0: से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा जा।

से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लेकिन ताड़ने वाले जा जर

अभी आप सुन रहे थे सहरा फिल्म का युगल गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी रामलाल ने। इसके साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्वाला प्रसाद और साथियों के गाए लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे ज्वाला प्रसाद और साथियों के स्वर में लोक भजन कार्यक्रम। लोक संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आए दिन बहार के फिल्म का गीत आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत लिया है मेरे जीवन साथी फिल्म से, इसे गाया है किशोर कुमार ने। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में महबूब की मेहंदी फिल्म से। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मेरे हमसफर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मेरी हमसफर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरसरिता यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लीना परमार का राग भैरव में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लीना परमार का राग भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उर्दू अदब और हिंदी सिनेमा की उस महान शख्सियत की, जिनकी शायरी में इंकलाब भी था, मोहब्बत भी, दर्द भी था और इंसानियत की गहरी पुकार भी। आज की ये प्रस्तुति समर्पित है मशहूर शायर, गीतकार और विचारक कैफी आजमी को। कैफी आजमी केवल एक शायर नहीं थे, बल्कि एक सोच थे, एक चेतना थे, एक ऐसा नाम थे जिन्होंने शब्दों को समाज की आवाज बना दिया। उनकी शायरी में जहां एक ओर नर्म एहसासों की खुशबू है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों की मजबूत जमीन भी दिखाई देती है। कैफी आजमी साहब का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से कस्बे मिजवा में हुआ था। उनका असली नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें शायरी का शौक हो गया था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में गजलें और नज़में कहना शुरू कर दिया था। उनके भीतर साहित्य के साथ साथ समाज को समझने और बदलने की बेचैनी भी थी, और यही बेचैनी आगे चलकर उनकी पहचान बन गई।

दोस्तों, कैफी आजमी प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे केवल प्रेम और सौंदर्य के शायर नहीं थे, बल्कि मजदूर, किसान और आम आदमी की तकलीफों को अपनी नज्मों में आवाज देने वाले शायर थे। उनकी शायरी में इंसाफ, बराबरी और बदलाव की स्पष्ट झलक मिलती थी। उन्होंने उर्दू शायरी को सिर्फ महबूब और मैं खाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज की धड़कनों से जोड़ा। उनकी मशहूर रचनाओं में औरत, मकान, बहुरूपनी और कई यादगार नज़में शामिल हैं। उनका अंदाज बेहद असरदार, विचारशील और दिल को छू लेने वाला था।

कैफी आजमी ने हिंदी सिनेमा में भी अपना एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान बनाया। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखे। उनकी लेखनी में काव्यात्मकता, गहराई और संवेदना का अद्भुत मेल था। उन्होंने फिल्मों में सिर्फ गीत नहीं लिखे बल्कि अपने शब्दों से दृश्यों को आत्मा दी। उनके लिखे हुए कई गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। फिल्म कागज के फूल, हकीकत, हीर रांझा, गर्म हवा और पाकीजा अन्य फिल्मों में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। विशेष रूप से फिल्म हीर रांझा के संवाद पूरी तरह शायरी में लिखे गए थे, जो अपने आप में एक अनोखा और ऐतिहासिक प्रयोग माना जाता है।

दोस्तों, कैफ़े आज़मी की निजी ज़िंदगी भी उतनी ही खूबसूरत और प्रेरक थी। उनकी पत्नी थी मशहूर रंगकर्मी और अभिनेत्री शौकत आज़मी। दोनों का रिश्ता साहित्य, रंगमंच और विचारों की साझेदारी से बना एक बहुत ही गहरा और सुंदर रिश्ता था। उनकी बेटी शबाना आज़मी हिंदी सिनेमा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं और बेटे बाबा आज़मी प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर हैं।

कैफी आजमी को साहित्य और सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। फिल्मों में उनके योगदान के लिए भी उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। उनके लिखे संवाद और गीतों ने आलोचक

आलोचकों और दर्शकों दोनों का मन जीता। दोस्तों, ये महान शायर 10 मई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोग कभी पूरी तरह नहीं जाते। वे अपनी रचनाओं, अपने विचारों और अपने शब्दों के माध्यम से हमेशा जिंदा रहते हैं। कैफी आजमी साहब भी आज अपनी शायरी, अपने गीतों और अपने सामाजिक सरोकारों के कारण हम सबके बीच मौजूद हैं। और अब मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त, देती हूँ अपनी वाणी को विराम और आपको छोड़े जाती हूँ कैफी आजमी साहब की लिखी इस गजल के साथ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस अमूल्य धरोहर की जिसके बिना जीवन की कल्पना ही अधूरी है। विषय है जल जीवनदायक है, इसे व्यर्थ न करें। जल केवल हमारी प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, खेल खलिहान हो या फिर हमारी नदियां और झीलें, सबका जीवन जल से ही चलायमान है। हमारे शरीर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जल से बना है, इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि जल है तो जीवन है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस पानी पर हमारा आज और कल टिका है, उसी पानी को हम अक्सर बिना सोचे समझे व्यर्थ बहा दे दे। कहीं नल खुला रह जाता है, कहीं गाड़ियों की धुलाई में अनावश्यक पानी बहाया जाता है, तो कहीं वर्षा जल को सहेजने के बजाय यूं ही बह जाने दिया जाता है। धीरे धीरे यही लापरवाही जल संकट का कारण बनती है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुरीले गीत से।

इस गीत की कोमलता जैसे हमें प्रकृति की उसी मधुर छुवन से जोड़ देती है जिसमें हवा, मिट्टी और पानी मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब धरती पर हरियाली दिखती है, जब पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, जब मौसम सुहाना लगता है, तो उसके पीछे जल का ही आशीर्वाद होता है। आपने देखा होगा कि जहां पानी होता है वहां जीवन होता है, और जहां पानी की कमी होती है वहां संघर्ष शुरू हो जाता है। आज कई क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं और लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। ये केवल प्रकृति ही नहीं, हमारी आदतों की भी चेतावनी है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो पानी की बड़ी बचत की जा सकती है, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना, बाल्टी से स्नान करना, रसोई में बचे हुए साफ पानी का उपयोग पौधों में करना और रिसते हुए नलों को तुरंत ठीक करवाना। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। और दोस्तों, आइए अब सुनते हैं बारिश की बूंदों से भीगा हुआ ये सदाबहार गीत।

सावन की रिमझिम मन को भले ही आनंद से भर दे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। बारिश का पानी प्रकृति की सबसे सुंदर देन है और इसे सहेजना हमारी समझदारी है। दोस्तों, वर्षा जल संचयन यानी बारिश के पानी को संचित करना आज समय की बड़ी आवश्यकता है। अगर घरों, स्कूलों, कार्यालयों और इमारतों में वर्षा जल को बचाने की व्यवस्था हो तो जमीन के भीतर पानी का स्तर सुधर सकता है। ये न केवल भविष्य के लिए लाभकारी है बल्कि पानी की कमी वाले इलाकों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इतना सा पानी बचाने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद की बर्बादी से संकट बढ़ता है।

ये गीत जैसे हमें जल की एक और सच्चाई से रूबरू कराता है कि हर पानी उपयोगी नहीं होता। समुद्र का पानी हमारे सामने अथाह मात्रा में है, लेकिन उसका खारापन हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। इससे समझ में आता है कि पीने योग्य स्वच्छ जल कितना सीमित और कितना कीमती है। दोस्तों, पानी बचाने के साथ साथ उसे स्वच्छ रखना भी उतना ही आवश्यक है। अगर नदियों में गंदगी जाएगी, तालाबों में कचरा भरेगा और जल स्रोत प्रदूषित होंगे, तो वही पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए जल संरक्षण का अर्थ केवल पानी बचाना नहीं, बल्कि जल की शुद्धता और सम्मान बनाए रखना भी है। हम सब अपने स्तर पर ये कर सकते हैं कि कचरा जल स्रोतों में ना डालें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और अपने आसपास के तालाब, कुएं, बावड़ियां, नदियां और जलाशयों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक बने। और दोस्तों, अब आइए सुनते हैं बादलों की पुकार सा एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, जब मेघा घिरते हैं तो धरती की आस जग उठती है, किसान की निगाहें आकाश की ओर उठती हैं, पेड़ पौधे जैसे प्राणवायु से भर जाते हैं और तपती हुई धरती को ठंडक मिलती है। लेकिन आज आवश्यकता केवल बारिश के इंतजार की नहीं बल्कि पानी के सही उपयोग की भी है। घर में रोजमर्रा के कामों में अगर हम थोड़ी सावधानी रखें तो बहुत पानी बच सकता है, जैसे बर्तन धोते समय लगातार नल ना चलाना, गाड़ी पाइप से नहीं बाल्टी से धोना, कूलर या आरओ का बचा पानी दूसरे उपयोग में लेना और बच्चों को बचपन से पानी की कीमत समझाना। याद रखिए दोस्तों, जल संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं, ये तो जीवन शैली बनना चाहिए

कितना सुंदर भाव है इस गीत का। बादल आते हैं तो उम्मीद जागती है, पर दोस्तों केवल बादलों के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमें ये समझना होगा कि पानी असीम नहीं है। आज जनसंख्या बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, जमीन पक्की होती जा रही है, तालाब कम हो रहे हैं और पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल पर्यावरण की बात नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है। दोस्तों जल जीवन की धड़कन है, प्रकृति का श्रृंगार है और मानव सभ्यता की सबसे अनमोल पूंजी है। इसे बचाना केवल समझदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें, जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, वर्षा जल को सहेजने का प्रयास करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को जल का महत्व अवश्य समझाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाह के आपसे विदा लेती हूँ। याद रखिए दोस्तों, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
3: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें
3: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
3: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है
3: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
3: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है

0: जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: आप गर्मी अम्मा हैं।
1: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
1: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
0: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
1: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
1: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
0: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
0: अरे ये क्या गिरा?
1: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
4: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
1: मेरे ही मौसम का एक फल है।
0: दिखाओ ना।
1: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
0: इसका नाम
1: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
4: स्वाद है,
0: पसंद है,
4: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
4: कौन सा फल?
1: नहीं समझी?
4: नहीं।
1: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
5: लाओ अम्मा,
4: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
7: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।

0: तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
1: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
0: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: Behind you was the sound of Bofors' gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
1: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं, रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब, साहब, दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
7: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर, हम एक चरवाया है।
7: आगे बताओ
6: सर। ये 3 मई की बात है।

0: कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
1: क्या देखा तुमने?
0: शब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
1: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
1: कितने लोग रहे होंगे?
0: शब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: शाब, मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
1: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
4: उधर से। हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।

0: जी सर।
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
0: जी सर।
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
0: जी सर।
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
0: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे। कोई शक?
0: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
3: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी।
4: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे। जी सर।
4: कोई भी उठकर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले।
3: एवरीबॉडी रेडी?
4: यस सर।
3: यस सर।
1: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
2: Fire!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म मस्ती से आनंद राज आनंद की आवाज में, समीर के बोल थे आनंद राज आनंद की धुन। अगला गीत है फिल्म बंटी और बबली से, महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम की आवाजें हैं। गुलजार के शब्दों को संगीत में ढाला है शंकर एहसान लॉय ने।

0: जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: कार्यक्रम में तराने आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सपना मुखर्जी और उदित नारायण को फिल्म फिदा में। अनु मलिक की धुन पर बोल है समीर के।

केके को आपने सुना फिल्म भूल भुलैया में सईद कादरी की शब्द रचना थी, प्रीतम की संगीत रचना। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश है फिल्म कॉकटेल से। कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाजें हैं। इरशाद कामिल की रचना को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायक

0: विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. News read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the

0: प्रतिशत तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान एनटीए ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के कयाम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातुओं पर इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। यह खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। समय है

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। एक ऐसी बात जिसे हम सब महसूस तो करते हैं पर खुलकर कहते नहीं, जैसे कि हमें आता ही नहीं यह समझ कि हम इस बारे में बात करें तो करें कैसे। और ये विषय है हमारी मेंटल हेल्थ, आज के दौर में मेंटल हेल्थ की अहमियत। बहनों, हम सब ना अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ संभाल रहे हैं, घर, पढ़ाई, काम, रिश्ते, नातेदार, सब कुछ, और ऊपर से ये सब ठीक है दिखाने का दबाव भी। लेकिन सच बताएं, क्या सच में सब ठीक होता है? कभी मन बिना वजह उदास हो जाता है, कभी छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है, कभी लगता है बस अब थोड़ा रुक जाऊं और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। पर हम क्या करते हैं, हम चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने किसी से कहा तो लोग क्या कहेंगे, ये तो छोटी सी ही बात है, और अंदर ही अंदर सब दबाते रहते हैं। जानते हैं, जब हम ये अपने मन में रखकर सब दबाना शुरू करते हैं ना, बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। असल में जैसे हमारे शरीर को आराम और देखभाल की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे मन को भी जरूरत होती है कि उसे भी थोड़ा आराम मिले। तनाव, चिंता और अकेलापन से जूझते आजकल हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि हम अपनी असली फीलिंग्स किसी के साथ साझा नहीं करते, किसी से अपनी मन की बात को बांटना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं कि लोग आखिर कहेंगे क्या। पर बहनों, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के लिए समय निकालें, किसी अपने से बात करें, जो अच्छा लगे वो ज़रूर करें, और सबसे ज़रूरी खुद को समझें। जब लगे कि सब अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो मदद लेने में हिचकिचाए नहीं, अपनी खुशी चुनें, अपनी मेंटल हेल्थ को अहमियत दें। तो ये तो थी आज हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ बातें। याद रहे बहनों, मन खुश तो तन भी खुश। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: बहनों, आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं जिन्होंने हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से जोड़ दिया है। लेकिन क्या ये जुड़ाव असल में हमें अपने अपनों से दूर कर रहा है? क्या सोशल मीडिया हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? आइए करते हैं बात और जानते हैं आज की मेहमान इस बारे में क्या सोचती हैं। शिवी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू शिवांगी।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया हमें बीमार बना रहा है और हमें हमारे अपनों से दूर कर रहा है?
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कई मानसिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। जिन पर देना, दिन भर मोबाइल स्क्रीन पर हम लगे रहते हैं तो उसकी वजह से तनाव होने लगा है। चिंता और डिप्रेशन जैसी बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में आ जाती हैं।
0: जी,
1: और बहुत सारे ऐसे शोध हैं जो बताते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकदार जिंदगी को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगे हैं, और लाइक्स और कमेंट्स की इस जो दौड़ में लोग अपनी असली खुशी को भूलते चले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे तो लगता है कि परिवार और समाज भी एक दूसरे से दूर होता जा रहा है कहीं ना कहीं। आपका क्या सोचना है?
1: शिवांगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले लोग खाली समय में परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे।
0: जी,
1: लेकिन अब हर कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है।

0: बिल्कुल
1: घर में माता पिता और बच्चे एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से कटे रहते हैं। दोस्तों से मुलाकातें अब कम हो गई हैं और क्योंकि ऑनलाइन चैटिंग बढ़ चुकी है, आपसी रिश्तों में नजदीकी इसी वजह से कम होती चली जा रही है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग अक्सर मोबाइल पर चैटिंग कर लेते हैं तो उनको लगता है कि इतना ही काफी है और असल में मिलना उनके लिए उतना जरूरी नहीं रह जाता। अच्छा, इसके हेल्थ पर जो इफेक्ट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों की समस्या, सिरदर्द और नींद की कमी जैसी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। और मोबाइल और लैपटॉप के अधिक उपयोग से लोग कम एक्टिव हो रहे हैं,
0: जी
1: जिसमें मोटापा और अन्य बीमारियां भी इसी वजह से बढ़ रही हैं।
0: जी अच्छा, इसको कम कैसे किया जा सकता है? आपका इस बारे में क्या सोचना है?
1: देखिए, एक बहुत लॉजिकल सी बात है कि इसको पूरी तरह से छोड़ना तो संभव नहीं है,
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन इससे अगर संतुलित तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। जैसे कि आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, है ना, दिन में
0: जी
1: कुछ घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर देखें और परिवार और दोस्तों से वास्तविक मुलाकात करें, ना कि चैटिंग की दुनिया में लगे रहें।
0: बिल्कुल
1: तो और नियमित दिनचर्या बना लें कि इतने ही घंटे आपको उसको टाइम देना है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहते कि मोबाइल की दुनिया से बाहर आ सके, मोबाइल आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया था, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो अपने आसपास के लोगों से मिलना बहुत जरूरी है बहनों। असल में लोगों से मिलें, असल दुनिया में जिएं, ना कि वर्चुअल दुनिया में। तो बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आसपास के लोगों से मिलकर उनके साथ समय बिताएं, ना कि वर्चुअल दुनिया में। फिलहाल मुझे और भी बहुत कुछ कहना है, क्योंकि मुझे कुछ कहना है। बहनों, आजकल ना एक अजीब सी बात देखने को मिलती है कि हमारे फोन तो फुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल खाली होते जा रहे हैं। हमारे फोन में कॉन्टेक्ट्स भरे हुए हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, हर वक्त नोटिफिकेशन आते रहते हैं, फिर भी कई बार अंदर से खालीपन महसूस होता है। हम घंटों स्क्रॉलिंग करते हैं, लोगों की फोटोज देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, और अनजाने में खुद की जिंदगी को उनसे कंपेयर भी करने लगते हैं। धीरे धीरे हम ऑनलाइन तो कनेक्टेड होते जाते हैं, लेकिन अपनी असली जिंदगी में अपने परिवार, अपने दोस्तों से डिसकनेक्टेड होते जाते हैं। पहले हम लोग आपस में बातें किया करते थे, अब बस चैट्स करते हैं। पहले हंसी असली होती थी, अब मानो सारे इमोशंस इमोजी में ही सिमट कर रह गए हैं। सब कुछ है हमारे आसपास, फिर भी ना जाने क्यों दिल खाली सा होता जा रहा है। पर आखिर क्यों, ऐसा क्यों है कि हमारे फोन फुल होते जा रहे हैं और हम जहनी तौर पर खाली होते जा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमने रिश्तों को स्क्रीन तक सीमित कर दिया है और खुद को भी। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा रुकें, फोन से नजर हटाकर अपने लोगों की तरफ देखें, उनसे बातें करें, साथ में समय बिताएं और सच में कनेक्ट करें। तो आज बस इतना ही कहना चाहूंगी कि फोन में स्पेस कम हो या मेमोरी फुल हो, ये बड़ी बात नहीं है, पर दिल में खालीपन, ये बात जरूर बहुत बड़ी है। क्योंकि बहनों, ये जिंदगी ना ऑनलाइन नहीं, रियल कनेक्शन से खूबसूरत बनती है। तो अपने दिल को अपनों की यादों से भरें, प्यार और अपनेपन की भावनाओं से सजाएं, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाकर अपनों के करीब आएं, रील से बाहर रियल लाइफ में जिएं। तो ये तो थी मुझे कुछ कहना है मैं आज की बातें। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं ये कहानी। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो यूं ही नहीं होता। हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं विधि का विधान छुपा होता है। लेकिन क्या सच में हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई होती है, या फिर हम खुद अपनी किस्मत के लेखक हैं? आइए सुनते हैं जया की कहानी, कि कैसे एक छोटी सी कहानी में एक ऐसी मेहनती स्त्री, जिसकी किस्मत उसे बार बार ऐसी राह पर लेकर आती है जहां उसे लगता है कि शायद सब कुछ पहले से तय है, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी सोच ही बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कहानीकार हैं डॉक्टर कविता रायजादा।
2: बीएड का रिजल्ट आते ही जया उछल पड़ी। उसके 72% अंक आए थे। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया तो वह यह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी खुशी का इजहार

करे तो कैसे करे। वह अतीत की यादों में खो गई और सोचने लगी, वह दिन भी क्या थे जब वह अपने तीन भाइयों और माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। बहुत खुश थी वह अपने छोटे से परिवार में, मगर विधि का विधान क्या है कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन उसके माता पिता का देहांत हो गया, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उन तीनों चारों भाई बहनों पर। अभी वह उस दुख से उबर भी न पाई थी कि एक दिन दोनों भाई स्कूल पढ़ने जा रहे थे, अचानक बस से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मौके पर ही दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। एक भाई और एक बहन क्या करते समझ ही नहीं पा रहे थे। रिश्तेदारों ने सहारा दिया, एक भाई और एक बहन कैसे साथ साथ रहेंगे, सोचकर विचार किया कि क्यों ना उस बहन की शादी कर दी जाए। कम से कम 15 साल की जवान बहन की जिम्मेदारी तो खत्म होगी। उस समय जया सिर्फ 10वीं पास थी। दुखों की मारी जया क्या करती, सिर से माता पिता और दो भाइयों का साया भी छिन चुका था। क्या कहती, जो कुछ रिश्तेदारों व भाई ने कहा सर झुका के मान लिया, क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत छोटी थी। कुछ निर्णय लेने लायक वह नहीं थी और ना ही ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि वह मात्र 16 साल की थी और उसकी शादी कर दी गई। माता पिता थे नहीं, इसलिए शादी भाई ने ही की थी। शादी के बाद धीरे धीरे वह वक्त के साथ अपने दुखों को भूलने लगी, क्योंकि सारे जहां की खुशियां उसके दामन में थी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, बहुत लाड़ प्यार से मिल रहा था उसको ससुराल में। सभी उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड़ करते थे। देखते ही देखते 3 साल में उसके 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, 2 लड़कियां और 1 लड़का। वह अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। उसे नहीं पता था कि यह खुशी कुछ ही दिनों की है। अभी दुख खत्म नहीं हुए हैं, मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूटने ही वाला है। इन सब बातों से बेखबर उसके पति ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और 2 परिवार मिलकर निकल पड़े पहाड़ों की सैर पर। 6 दिन का समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। घर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, तो सबने सोचा क्यों ना नीलकंठ और घूम लिया जाए। तो फिर क्या था, ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी घूम गई नीलकंठ की तरफ। हंसते गाते मुस्कुराते अंत्याक्षरी खेलते कब नीलकंठ नज़दीक आ गया किसी को पता ही नहीं चला। अचानक ड्राइवर की झपकी लग गई और एक ही पल में खेल खत्म हो गया। पहाड़ों पर दौड़ती गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। चीख पुकार मच गई। वही गांव के कुछ लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, मगर जया के परिवार में से तो सिर्फ जया ही बची थी। उसका पति, एक बेटा और एक बेटी तीनों अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो गए। एक घर से 3-3 लाशें, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। एक बेटी की लाश नहीं मिली थी, मगर खोजबीन करने पर एक पेड़ पर उसकी छोटी बेटी पुलिस को मिली। उसकी सांसें चल रही थीं। तुरंत अस्पताल

0: अस्पताल लाया गया। उसके सिर से खून बह रहा था। खून भी इतना बह चुका था कि काफ़ी समय लग गया उसकी हालत सुधरने में। सिर में तो डॉक्टर्स को 27 टांके लगाने पड़े। जया को तो होश ही नहीं था। वह तो पूरे एक महीने अस्पताल में ही भर्ती रही। उसे पता ही नहीं था कि उसका पति, बेटा और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उसका तो संसार ही उजड़ चुका था। उसकी कोख और सेज दोनों ही सूनी हो गई थी। जब उसे बताया गया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो अपने होशो हवास में अपने परिवार को हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। वह तो आज तक करवा चौथ का व्रत रखती है, यही सोचकर कि एक ना एक दिन उसका पति अवश्य आएगा। 15 साल हो गए, लेकिन उसका पति आज तक वापस नहीं आया। लेकिन जया ने भी हार नहीं मानी। जो 16 साल की लड़की हाई स्कूल पास करके आई थी, उसने धीरे धीरे इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी के साथ साथ बीए, एमए और बीएड कर लिया था। आजीविका चलाने के लिए उसने छोटे मोटे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करनी शुरू कर दी। साथ ही घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। आज वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी प्रिया, जो कि उस एक्सीडेंट में बच गई थी, उसका आगरा के ही विख्यात विश्वविद्यालय में बीएससी में दाखिला हो गया था। और वह अपने साथ साथ अपनी माँ जया को भी शिक्षा के अनुरूप आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, कर्म ही है जीवन का सार, कर्म ही है वेदों का आधार, कर्म का ही लेकर नव मंत्र पहुंचना होगा हमको पार।
1: तो बहनों, थी ना कितनी प्यारी कहानी। जहां जया के जीवन में इतने संघर्ष आए, उसके बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। और जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया कि कर्म ही है जीवन का सार, तो बस कर्म किए जाओ, कभी ना कभी आपके जीवन के सारे संघर्षों से पार आकर आप भी सफलता जरूर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट है हमारा मेरी माटी मेरा देश। मैंने भारत की माटी केवल जमीन नहीं है, ये त्याग, समर्पण और संघर्ष की खुशबू से महकती है। इसी पवित्र माटी ने ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। आज मेरी माटी मेरा देश के इस अंक में हम याद कर रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी को, जिनकी आज जयंती है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी सादगी, निष्ठा और देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। 13 मई को जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद जी ने अपने जीवन का हर पल देश सेवा में जिया। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए। पहले उन्हें 1 साल के लिए जेल भेजा गया, फिर पुनः भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें कारागार में डाला गया और इस तरह कुल उन्होंने 4.5 साल अपने जीवन के जेल में काटे। पर वे अंग्रेजों से डरकर पीछे नहीं हटे और स्वतंत्रता संग्राम में डटे रहे। बाद में आजाद भारत में सन 1974 में वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इस पद को संभालने वाले वे दूसरे मुस्लिम नेता बने। एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें राष्ट्रपति। उन्होंने हर भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। उन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने आपातकाल की घोषणा करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे कि इंदिरा जी को अध्यादेश द्वारा शासन करने की अनुमति मिली थी। ये उनके जीवन का सबसे विवादास्पद

मामला भी रहा, फिर भी वह एक बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति सिद्ध हुए। वे पद पर रहते हुए इस संसार से विदा लेने वाले दूसरे भारतीय राष्ट्रपति थे। 11 फरवरी 1977 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी निधन हो गया। बहनों, उनकी सबसे खास बात पता क्या थी? उनकी खास बात थी उनकी विनम्रता। इतने ऊंचे पद पर रहने के बाद भी वे जमीन से जुड़े रहे। अपना पूरा जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। अंत समय तक

रहने के बाद भी वे जमीन से जुड़े रहे। अपना पूरा जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। अंत समय तक वे देश हित में कार्य करते रहे। आइए उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

बहनों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतना व्यस्त हो चुके हैं कि घर परिवार नाते रिश्तों को तो हम समय तब भी दे देते हैं, पर एक इंसान ऐसा है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, पता है वो कौन है? वो हैं हम खुद। जी हाँ, हम दिन भर दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब भी बात खुद की आती है तो खुद से ही कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है। धीरे धीरे यही खुद को समय ना देना, अपने मन की ना सुनना और खुद को बस एक मशीन बना लेना, ये थकान, चिड़चिड़ापन और खालीपन में बदल जाता है। बहनों, पते की बात यह है कि खुद को समय देना कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि जरूरत है। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, जो पसंद हो वो करें, थोड़ा आराम भी करें और कभी तो अपने मन की सुने, क्योंकि बहनों जब हम खुद को खुश रख पाते हैं और शांत रख पाते हैं ना, तभी हम दूसरों को भी खुशी दे पाते हैं। मानो खुद को समय देना भूल गए तो जिंदगी जीना भी भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा वक्त खुद के नाम भी कीजिए, यही जीवन का सबसे जरूरी निवेश है। तो आज से, अभी से जीवन में सबसे पहले शुरू करते हैं खुद को थोड़ा समय देना, क्योंकि खुद को समय देना है सबसे जरूरी। ये थी हमारी आज की बात पते की। अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो बहनों, हमने आज कर ली है ढेर सारी बातें, पर हाँ, एक आपको मालगुड़ी डेज याद है जो टीवी पर आता था? हमारे बचपन का प्यार, जी हाँ, मालगुड़ी की कहानियां, महान लेखक आर के नारायणन जी की कहानियां, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने मालगुड़ी जैसा काल्पनिक शहर बनाया। लेकिन सच कहें तो हर कोई उसमें अपना शहर ढूंढ लेता। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद ही ना करें बल्कि उनकी सादगी और सोच को भी अपनाने की कोशिश करें। थोड़ा रुककर अपने आसपास के लोगों को समझें, उन छोटी खुशियों को महसूस करें जो अक्सर हमारी भागदौड़ में कहीं खो जाती हैं। क्योंकि सच मायने में जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं वही हमारे लिए अक्सर सबसे जरूरी होते हैं। इसी के साथ खुद को समय दें। आप हो चुका है हमारी घड़ी में समय आज का आपसे विदा लेने का। आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का आपको प्यार भरा नमस्कार।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार, और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में कुछ गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस इन तमिलनाडु, सी जोसेफ विजय लेड टीवीके गवर्नमेंट विंस फ्लोर टेस्ट इन स्टेट असेंबली विद कंफर्टेबल मेजॉरिटी। एन रंगस्वामी स्वानियन एस चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी फॉर अ रिकॉर्ड फिफ्थ टर्म। सेंटेन स्टेट्स इंटेंसिफाई फ्यूल सेविंग मेजर्स फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपील एमिड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। सीबीएसई डिक्लेयर्स ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th रिजल्ट्स। Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA DMK led by SP Velumani supported the government. We have a report.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को

0: पढ़कर सुनाया, जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है।

0: भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून

0: आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी का राग भैरवी में ठुमरी गायन।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म श्री 420 से लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन। अगला गीत है फिल्म यारी दुश्मनी से, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को आपने सुना फिल्म पतिता में। शंकर जयकिशन की धुन पर बोल थे हसरत जयपुरी के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

लता मंगेशकर और सोनू निगम के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म 1-2 का 4 से। महबूब की शब्द रचना थी, एआर रहमान की संगीत रचना। अगला गीत है एक बार फिर लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में, राहुल शर्मा की धुन पर, बोल हैं आनंद बख्शी के। फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम गीत गुंजन की अगली पेशकश है फिल्म हमराज से उदित नारायण की आवाज में। सुधाकर शर्मा की शब्द रचना है, हिमेश रेशमिया की संगीत रचना।
2: तुमसा कोई दूसरा इस समीप पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे, जतिन ललित की धुन। फिल्म का नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म नमस्ते लंदन से। सुनिधि चौहान और हिमेश रेशमिया की आवाजें हैं। हिमेश रेशमिया की धुन पर बोल हैं जावेद अख्तर के।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के प्रसारण के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी

0: ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर द्वंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोतो, इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर। श्रोतो, इस कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे चर्चा जैसा देश वैसा विशेष विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे अरुण मिश्रा से, उनकी वार्ता विषय होगा भारत निर्माण में स्टार्टअप का योगदान। इसके अलावा हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा ग्रामालोक 6:00। इसमें आज हम आपसे चर्चाएं करेंगे गर्मियों में पशुधन की देखभाल और अन्य चर्चा का विषय रहेगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे भेंट वार्ता प्राकृतिक खेती से लाभ विषय पर, जिसमें प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मौसम की, मंडी भाव की, और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का।

श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा मजदूर मंडल 6:30 पर। श्रोता उसमें चर्चा सुनेगा डिजिटल युग में महिलाएं विषय पर। इसके अलावा ज्योति श्रीवास्तव की कहानी का शीर्षक होगा सौदा। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज वार्ता होगी हम सब सुमन एक उपवन के विषय पर। वार्ताकार होंगी डॉ शेफाली चतुर्वेदी। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात्रि 8:00, चित्रपट संगीत 8:30 पर और रात्रि 10:00।

श्रोताओं, अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार 6:25 पर। श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसंग सुनेगा 6:35 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर ब्रिजभूषण सिंह की वार्ता होगी, पशुओं में अफरा रोग कारण और निवारण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर विशाल गुप्ता जानकारी देंगे दांतों में पायरिया विषय पर। प्रसारण समय रहेगा 7:10 का।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर सुनेगा प्रेम तिवारी के गाए लोकगीत। दिन में 11 बजे कार्यक्रम होगा आज के कलाकार श्रोताओं, जिसमें कल बातचीत होगी फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या के बारे में। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। इसमें कल का विषय है ग्रीष्म ऋतु में संतुलित आहार से स्वास्थ्य रक्षा। श्रोतो, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या, कार्यक्रम का पहला भजन।

श्रोताओ, नीलकमल फिल्म के लिए ये स्वर था आशा भोसले का, बोल थे साहिर के और संगीत था रवि का। आइए अब सुनते हैं अजीज नाजा, कंचन और साथियों का गाया फिल्म रफू चक्कर का भक्ति गीत, जिसे लिखा है गुलशन बाबरा ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

सीमा फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मन्ना डे और साथियों की। शैलेंद्र के लिखे इस भक्ति गीत को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म जोधा अकबर की भक्ति गीत, जिसे स्वर दिया है बेला शिंदे ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और तर्ज बनाई है AR रहमान ने।

श्रोताओ, बेला शिंदे के गाए फिल्म जोधा अकबर के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार युवा साथियों। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी युवा श्रोताओं का उनके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, जहां आज आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी अपूर्वा परिहार को। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी नई जगह जाते हैं, चाहे वो कोई नया शहर हो, कोई दूसरा राज्य या फिर कोई दूसरा देश, तो वहां की भाषा, खान पान और पहनावे का असर हम पर अपने आप आ जाता है। पर मन ही मन हमारे बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, जैसे यहां सब ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ट्रेडिशनल पहनना चाहिए या मॉडर्न, इस कल्चर को फॉलो करना जरूरी है या नहीं। साथियों, इन्हीं सवालों और सोच के बीच छुपा है आज का हमारा विषय, जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष केवल एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की समझ और अडैप्टेबिलिटी को दर्शाने वाला विचार है। दोस्तों, इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग भाषा, अलग खान पान और अलग पहनावा। अगर हम पंजाब जाएं तो वहां की पंजाबी सूट और पगड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान में रंग बिरंगे घाघरा चोली और साफा देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल साड़ी और वेस्टी कल्चर को दर्शाता है। और ये सभी पहनावे सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि वहां की ट्रेडिशन, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल का हिस्सा है। दोस्तों, आज के समय में फैशन ग्लोबल हो चुका है।

यूथ वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनते हैं और ट्रेडिशनल भी प्राउडली कैरी करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम जहां जाएं वहां की संस्कृति का सम्मान करें। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यहां की अलग अलग संस्कृतियां होते हुए भी लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, लेकिन फिर भी हम सब एक भारतीय कहलाते हैं। दोस्तों, किसी जगह का पहनावा केवल फैशन नहीं बल्कि वहां के मौसम, परंपरा, इतिहास और जीवन शैली से जुड़ा होता है। जैसे राजस्थान में गर्मी और रेगिस्तान के कारण हल्के और रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड के कारण ऊनी वस्त्र ज्यादा पहने जाते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रेडिशनल आउटफिट्स उनकी ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज को दर्शाते हैं, और साउथ इंडिया में सिल्क साड़ीज और ट्रेडिशनल धोती केवल कपड़े नहीं बल्कि सम्मान और संस्कृति का प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे राज्य या देश की संस्कृति को अपनाते हैं तो हम केवल उनके पहनावे को नहीं अपनाते बल्कि उनके विचारों और जीवन शैली को समझने की कोशिश भी करते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और लोग अलग अलग कल्चर्स को आसानी से देख और समझ पा रहे हैं। दोस्तों, युवा वर्ग कोरियन फैशन से लेकर इंडियन एथनिक वेयर तक सब कुछ कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहा है, लेकिन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच हमें अपनी ट्रेडिशंस और वैल्यूज को नहीं भूलना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है वही दूसरों की संस्कृति का सही सम्मान कर पाता है। जैसा देश वैसा भेष हमें फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट की सीख देता है। ये सिखाता है कि बदलते मौसम के साथ खुद को ढालना अच्छी बात है, लेकिन अपनी असली पहचान बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और शायद यही कारण है कि भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है। यहां अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहनावा अपनाने वाले और अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग एक साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं। तो दोस्तों, कपड़े केवल शरीर को ढकने का माध्यम नहीं है बल्कि वे हमारी संस्कृति, सोच और पहचान को भी दर्शाते हैं। जैसा देश वैसा भेष का मतलब खुद को खो देना नहीं बल्कि हर संस्कृति को सम्मान देना है। अगर हम एक दूसरे की परंपराओं को समझें और उनका आदर करें तो समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए याद रखिए, हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

0: रखने वाला युवा आज नौकरी देने वाला बन रहा है। छोटे छोटे आइडियाज आज बड़े बदलाव की नींव रख रहे हैं। साथियों, स्टार्टअप्स ना केवल तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को भी नई गति दी गई है। तो दोस्तों, आइए इस प्रेरणादायक विषय पर सुनते हैं वार्ताकार अरुण मिश्रा को और जानते हैं भारत निर्माण में स्टार्टअप्स के योगदान के बारे में।
1: स्टार्टअप इकोसिस्टम में इतना बड़ा उछाल देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना पूरा होगा। और ये सपना तभी पूरा होगा जब हम बड़े बिजनेसेस के साथ साथ छोटे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करेंगे। इन स्टार्टअप्स का हमारे अर्थव्यवस्था व हमारे जीवन में कितना और क्या योगदान है, इसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं। स्टार्टअप्स वे छोटे व्यापार होते हैं जो नए और नवीन विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। यह व्यापारिक योजनाएं आमतौर से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं और कम समय में तेजी से बढ़ती हैं। यह यात्रा आमतौर पर असीम संघर्षों के साथ जुड़ी होती है, मगर कहते हैं ना, संघर्षों के बाद ही सफलता का असली आनंद प्राप्त होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इन छोटे व्यापारियों को सपोर्ट व इनकरेज करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना ने इस स्टार्टअप रेस में क्रांति लाने का कार्य किया है और कई छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आगे आने का मौका दिया है। इन एंटरप्रेन्योर्स की सोच का ही नतीजा है कि आजकल के जीवन में अधिकतर सेवाएं आपसे महज कुछ क्लिक्स की दूरी पर आ गई हैं। जैसे यदि आपको शॉपिंग करनी है या कुछ भी आवश्यक खरीदना है तो आपको बाजार तक जाने का कष्ट नहीं करना होता, क्योंकि भारत में ऐसी कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन खरीदारी करने की सेवाएं मुहैया करवाती हैं। और केवल कपड़े या आवश्यक वस्तुएं ही नहीं, आपको भूख लगने पर आप तक खाना पहुंचाने का कार्य भी कई स्टार्टअप्स ने अपने सर पर उठा रखा है। दोस्तों, इस नवयुग के नवीन भारत में ये देश एक सुई से लेकर मंगलयान तक बनाने की क्षमता रखता है और भारत ने इसका लोहा दुनिया से भी मनवाया है। इसी आत्मनिर्भरता के विचार को एक नए आयाम तक लाकर खड़ा करने का कार्य हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स व उनके स्टार्टअप्स ने किया है। इन स्टार्टअप्स ने ना केवल हमारा जीवन आसान बनाने में हमारी मदद की है, बल्कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी और आसान व मजबूत बनाने का कार्य करके दिखाया है, जिसे पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर पाया। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं डिजिटल पेमेंट की ही बात कर रहा हूँ। ये नए स्टार्टअप्स व भारत सरकार का ही योगदान है जो आज एक सब्जी वाले से लेकर बड़े व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके नए और उत्कृष्ट विचारों के माध्यम से आता है, जिनके माध्यम से नए उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि होती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। स्टार्टअप्स का न केवल आर्थिक संदर्भों में बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी एक बड़ा योगदान रहा है। जब भी कोई स्टार्टअप एक विशाल कंपनी बनने के दृष्टिकोण से कदम उठाती है, तब उसे कार्य करने वाले नियुक्त युवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे और अधिक रोजगार पैदा होते हैं और समाज में बेरोजगारी कुछ हद तक कम होती है और युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, जिससे देश के साथ साथ युवाओं का भी विकास होता है। रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप्स ने तकनीकी प्रगति में भी योगदान दिया है व दे रहे हैं। ये स्टार्टअप्स नई तकनीकों व रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके हमारी कई जटिल समस्याओं का हल निकालने में मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर शिक्षा मिल रही है। ये स्टार्टअप्स अलग अलग क्षेत्रों में नए और बेहतर समाधान प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन और भी सुखद व आसान हो रहा है। इस प्रकार स्टार्टअप्स ने

दोस्तों, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी कहानियों में आम जीवन को खास बना दिया और मालगुडी डेज जैसी अनोखी दुनिया रची। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सामान्य लोगों की भावनाओं को अपनी लेखनी से विश्व भर में पहचान दिलाने वाले एक महान लेखक को आज हम याद कर रहे हैं और साथ ही उनकी जयंती भी मना रहे हैं। दोस्तों, अब आपको ये पता लगाना है कि आज का दिन किस महान लेखक को समर्पित है। आप जवाब ढूंढिए और साथ ही बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज का भारत केवल सपने देखने वाला देश नहीं है, बल्कि सपनों को साकार करने वाला देश है। कभी नौकरी ढूंढने की सोच

0: भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए स्तर पर उठाने में अपना असीम व महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन स्टार्टअप्स को देखकर हम ये भी सीखते हैं कि कभी कभी छोटे से आइडिया ही बड़े बदलाव का कारण बनते हैं, और हमारी यही आशा रहेगी कि भविष्य में भारत के युवा नए स्टार्टअप्स के साथ समाज में बदलाव लाएं व भारत को और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में सहयोग करें।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना वार्ताकार अरुण मिश्रा को, जिन्होंने हमें बताया भारत निर्माण में स्टार्टअप्स की भूमिका और उसके योगदान के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में रेत, तेज धूप और दूर दूर तक फैला सुनसान इलाका दिखाई देता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जिसे धरती का सबसे सूखा स्थान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एटाकामा मरुस्थल की। एटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के देश चिली में स्थित है। ये प्रशांत महासागर के किनारे है और लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, एटाकामा मरुस्थल की सबसे खास बात है कि ये बहुत कम बारिश होती है। कुछ जगहों पर तो कई वर्षों तक एक बूंद भी नहीं गिरती। इसी कारण से इसे दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ का मौसम और आसपास की पहाड़ियां बारिश के बादलों को रोक देती है। इसी वजह से यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ जीवन मौजूद है। कुछ विशेष प्रकार के पौधे और जीव यहाँ पाए जाते हैं जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, एटाकामा मरुस्थल केवल अपने सूखे मौसम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का आसमान इतना साफ होता है कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाते हैं। रात के समय में यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आसमान में चमकते तारे ऐसे लगते हैं जैसे धरती के बहुत करीब आ गए हों। दोस्तों, ये मरुस्थल पर्यटन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। और दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, एटाकामा मरुस्थल का कुछ हिस्सा इतना सूखा है कि वैज्ञानिक उसे मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों वाला क्षेत्र भी मानते हैं। इसी कारण यहाँ अंतरिक्ष से जुड़े कई प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एटाकामा मरुस्थल हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन संभव है और प्रकृति के हर रूप में कुछ ना कुछ विशेषता छुपी होती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना एटाकामा मरुस्थल के बारे में, और अब समय है हमारे खास सेगमेंट जीने की कला का, जहां हम बात करते हैं जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातों की जो हमारे रिश्तों और सोच पर बड़ा असर डालती है। दोस्तों, हंसी मजाक हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। थोड़ी हंसी, थोड़ी मस्ती और दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें हमारे दिन को बेहतर बना देती हैं। लेकिन कई बार यही मजाक धीरे धीरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगता है। दोस्तों, मजाक तभी अच्छा लगता है जब उसमें सभी की खुशी शामिल हो। अगर किसी की कमजोरी, उसके रंग रूप, बोलने के तरीके या उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाया जाए तो वह मजाक नहीं बल्कि चोट बन जाता है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया और दोस्तों के बीच रोस्टिंग और टीजिंग बहुत आम हो गई है। लोग अक्सर कहते हैं, अरे मजाक था, लेकिन कभी कभी वही मजाक सामने वाले के दिल में लंबे समय तक रह जाता है। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान की फीलिंग्स अलग होती हैं। जो बात हमें छोटी लगती है वही किसी दूसरे को अंदर से दुख पहुंचा सकती है। सच्ची समझदारी इसी में है कि हम ऐसा मजाक करें जिससे माहौल हल्का और खुशहाल बने, ना किसी की शर्मिंदगी महसूस हो। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक अच्छा मजाक किसी का दिन बना सकता है और एक गलत मजाक किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले ये जरूर सोचें कि अगर यही बात कोई हमसे कहे तो हमें कैसा लगेगा। जीवन की कला यही सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ होना जरूरी है। हंसी बांटना अच्छी बात है, लेकिन किसी की भावनाओं की कीमत पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपके मजाक से असहज महसूस करे तो उसकी भावनाओं को समझिए और अपनी बात को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि मैच्योर वही होता है जो समय रहते अपनी सीमा समझ जाए। तो दोस्तों, मुस्कुराइए, दूसरों को भी हंसाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मजाक किसी के दिल को

दोस्तों, अब समय आ गया है आपके आज के सवाल के जवाब का, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि आज हम किस प्रसिद्ध लेखक की जयंती मना रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है R.K. नारायण, जिनकी कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को भाती है और इनकी मालगुडी डेज आज भी हमारे दिलों में बसती है। इसी के साथ साथियों, हमें आज्ञा दें युवानी कार्यक्रम संपन्न करने का। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

पर पशु तेजी से सांस लेने लगते हैं, खाना कम खा पाते हैं और दूध देने की क्षमता भी घट जाती है। इसलिए इस मौसम में थोड़ी सावधानी बहुत जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात, पशुओं के लिए उचित छाया की व्यवस्था करना। गर्मी के मौसम में पशुओं को सीधे धूप में बांध के नहीं रखना चाहिए। पशुशाला ऐसी होनी चाहिए जहाँ हवा का अच्छा प्रबंध हो। छप्पर या टीन की छत पर घास, पुआल या सफेद रंग का लेप करने से गर्मी कम होती है। यदि संभव हो तो पशुशाला के आसपास पेड़ लगाइए। पेड़ प्राकृतिक ठंडक प्रदान करते हैं। दोपहर के समय पशुओं को बाहर चराने के बजाय छाया में आराम करने दीजिए। दोस्तों, गर्मी में पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार इंसान को बार बार प्यास लगती है, उसी प्रकार पशुओं को भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है इस मौसम में। गर्मी के मौसम में पशुओं को दिन में कई बार साफ और ठंडा पानी देना चाहिए। ध्यान रहे कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। एक दुधारू पशु को गर्मियों में सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 2 गुना पानी पीना चाहिए। यदि पशु को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। पानी की टंकी या बर्तन हमेशा साफ रखें। गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। अब बात करते हैं पशुओं के भोजन की। गर्मी में पशुओं की पाचन क्षमता भी प्रभावित होती है, इसलिए संतुलित आहार देना बहुत ही जरूरी है। गर्मियों में पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं। हरे चारे में पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं रहती। सूखा चारा कम मात्रा में दें, उसमें मिनरल मिक्सचर तथा नमक जरूर मिलाएं। दोपहर के समय ज्यादा भोजन देने के बजाय सुबह और शाम के ठंडे समय में चारा खिलाना अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा पशुओं को बासी या फफूंदी लगा चारा कभी भी ना दें, इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। किसान भाइयों बहनों, गर्मी के मौसम में पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मक्खी, मच्छर और कीड़े पशुओं को परेशान करते हैं, इसलिए पशुशाला की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोबर और गंदगी को नियमित रूप से हटाएं। आसपास पानी जमा ना होने दें। मक्खियों और मच्छरों से बचाव के लिए समय समय पर दवा का छिड़काव करें। पशुओं को नहलाना भी बहुत जरूरी है साथियों। गर्मियों में दिन में 1 या 2 बार पशुओं को साफ पानी से नहलाने से उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत तेज धूप में नहलाने के तुरंत बाद पशु को बाहर ना छोड़ें। अब बात करते हैं दुधारू पशुओं की। गर्मी के कारण दूध उत्पादन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यदि पशु को सही भोजन, पर्याप्त पानी और आराम नहीं मिलेगा तो दूध की मात्रा तेजी से घट सकती है। दूध निकालने का समय नियमित रखें। पशु को तनाव मुक्त वातावरण में दें। दूध निकालने से पहले और बाद में पशु के थनों की सफाई अवश्य करें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। यदि कोई पशु सुस्त दिखाई दे, बार बार सांस ले या खाना बंद कर दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों, छोटे बछड़ों और गर्भवती पशुओं की देखभाल भी गर्मियों में विशेष रूप से जरूरी हो जाती है। बछड़ों को तेज धूप से बचाना चाहिए। उन्हें साफ और सूखी जगह पर रखें। गर्भवती पशुओं को भी अधिक गर्मी से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक तापमान उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच करवाते रहें, इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और बीमारी का खतरा कम होगा। किसान भाइयों बहनों, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो गर्मियों में भी अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और दूध उत्पादन में कमी आने से बचा सकते हैं। याद रखिए, पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था करें, पर्याप्त साफ पानी दें, संतुलित और हरा चारा खिलाएं, पशुशाला को साफ रखें, समय पर टीकाकरण करवाएं और जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि गर्मियों में पशुधन की देखभाल कैसे की जाए। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, आपकी आय भी सुरक्षित रहेगी और नियमित रहेगी। तो साथियों, ये थी जानकारी इस गर्मियों में पशुधन की देखभाल करने की, और अब आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, आवाज थी निर्मला चोपड़ा की। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार की जो हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमें प्रकृति की सुंदरता और संतुलन का संदेश देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की। दोस्तों, हर साल मई और अक्टूबर महीने में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रवासी पक्षियों के महत्व, उनके संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा पक्षी जिसका वजन मुश्किल से कुछ 100 ग्राम होगा, लेकिन वह हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, पहाड़ों, समुद्रों और रेगिस्तानों को पार करता है, सिर्फ इसलिए कि उसे जीवित रहना है। इन्हें ही हम कहते हैं प्रवासी। प्रवासी पक्षी मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक ठंड, भोजन की कमी या

0: मौसम प्रतिकूल हो जाता है तभी पक्षी बेहतर वातावरण की तलाश में दूसरे देशों या महाद्वीपों तक उड़ जाते हैं। भारत भी ऐसे पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हर साल साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से लाखों पक्षी भारत आते हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, बार हेडेड गूज और कई प्रकार की बत्तखें शामिल हैं। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तराखंड की झीलें और बिहार का कांवर ताल जैसे स्थान प्रवासी पक्षियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पक्षी आज सुरक्षित हैं? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण और अवैध शिकार प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। पहले जिन झीलों में हजारों पक्षी दिखाई देते थे वहां अब उनकी संख्या लगातार घट रही है। प्रवासी पक्षी सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कीटों को नियंत्रित करते हैं, पौधों के बीज फैलाते हैं और हमें यह संकेत भी देते हैं कि पर्यावरण कितना स्वस्थ है। अगर पक्षी कम हो रहे हैं तो ये प्रकृति की बिगड़ते संतुलन का संकेत है। श्रोताओं, आज इंसान तकनीक में आगे बढ़ रहा है लेकिन यदि प्रकृति असंतुलित हो जाए तो विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। प्रवासी पक्षियों की सबसे खास बात यह है कि ये हमें सीमाओं से ऊपर उठकर जीना सिखाते हैं। इनकी दुनिया सिर्फ प्रकृति और जीवन है। एक छोटा सा पक्षी हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी सभी जीवों की साझा विरासत है। लेकिन सोचिए, यदि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही इन पक्षियों की तस्वीरें देखें तो क्या हम ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं जहां आसमान शांत हो, जहां सुबह पक्षियों की आवाजें सुनाई ना दे? शायद नहीं। इसलिए आज आवश्यकता है जागरूकता और सहभागिता की। हम क्या कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, पेड़ लगाएं और पुराने पेड़ों को बचाएं। पक्षियों का शिकार रोकने के लिए जागरूकता फैलाएं, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण कम करें, बच्चों को प्रकृति और पक्षियों के महत्व के बारे में बताएं। यदि हर वर्ष व्यक्ति के प्रकृति के लिए थोड़ा सा योगदान दे तो लाखों पक्षियों की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। दोस्तों, अब अगली बार आप सुबह किसी पक्षी की आवाज सुने तो सिर्फ उसे एक सामान्य आवाज मत समझिएगा। यह प्रकृति का संगीत है, धरती की धड़कन है और जीवन के संतुलन का संदेश है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता सिर्फ उपयोग का नहीं बल्कि संरक्षण और सह अस्तित्व का भी है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण और इन सुंदर मेहमान पक्षियों की रक्षा करेंगे। और साथियों, जब हम प्रकृति को संवारेंगे तभी वह हमारी आने वाली पीढ़ियों को संवारेगी। प्राकृतिक खेती भी एक जरिया है प्रकृति की देखभाल का। किसान भाइयों बहनों, प्राकृतिक खेती केवल खेती करने का तरीका नहीं बल्कि मिट्टी, पानी, पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का एक सरल और टिकाऊ माध्यम है। रासायनिक खादों और दवाओं पर बढ़ती लागत के बीच प्राकृतिक खेती किसानों के लिए कम खर्च में अच्छी पैदावार और बेहतर आमदनी का रास्ता बन रही है। आइए जानते हैं आज की भेंटवार्ता में कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार खेती को लाभकारी और भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। भेंटवार्ता का विषय है प्राकृतिक खेती से लाभ। प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह से भेंट कर रहे हैं ब्रजेंद्र नारायण।
1: किसान भाइयों, बहुत बहुत प्रणाम। इस समय आपकी खेतीबाड़ी तेजी से चल रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि रबी की फसल पे काफी कुछ काम चल रहा होगा। एक प्रश्न हमेशा ये सामने आता है कि मिट्टी की उर्वरता रासायनिक उर्वरकों के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई क्षेत्रों में मिट्टी ऊसर बनने लगी है और फिर जो वैज्ञानिक हैं वो भी एक सलाह देते हैं, कृषि वैज्ञानिक विशेष रूप से, कि अगर मिट्टी को नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से चलाया जाए यानी प्राकृतिक खेती की जाए और जो जैव उत्पाद हैं, जो जैव खाद हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाए तो मिट्टी न केवल मजबूत बनी रहती है, मिट्टी की उत्पादकता भी बनी रहती है और ये

0: दीर्घ काल तक सुरक्षित रहती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज सभी किसानों के सामने, और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जैविक खेती करने में क्या क्या लाभ हैं, किस प्रकार से इसे किया जाए और इसमें क्या बाधाएं आती हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं जिन्होंने जैविक खेती में बहुत अच्छे काम किए हैं। आप हैं श्री अरविंद प्रताप सिंह जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ये जैविक खेती जो होती है, या कहे कि ये जो प्राकृतिक खेती होती है, ये क्या होती है, क्यों इसे प्राकृतिक कहते हैं और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं?
1: नमस्कार सर, और सभी किसान भाइयों को भी हमारा नमस्कार। आज सर सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सामने वो बीमारियों को देखते हुए, ये आप सही कह रहे हैं कि अब हमें जैविक या प्राकृतिक खेती पर आना चाहिए।
0: तो कैसे आना चाहिए?
1: तो प्राकृतिक खेती जो है और जैविक खेती और रासायनिक, ये तीनों पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन प्राकृतिक इन दोनों पद्धतियों से अलग है क्योंकि इसमें हमारा पैसा खर्च होता है, रासायनिक में और जैविक में भी। लेकिन रासायनिक में हमें जहर युक्त उत्पादन प्राप्त होता है और जैविक में जहर मुक्त उत्पादन प्राप्त होता है। और प्राकृतिक एक ऐसी विधि है जो बिल्कुल लागत इसकी जीरो होती है क्योंकि इसमें जो भी तौर तरीके या खाद कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं, ये हम प्राकृतिक रूप से ही जो हमें प्रकृति ने दिया है हम उन्हीं चीजों का उपयोग करते, ये सारी सामग्री ओन अपने यानी खेत पर ही तैयार करते हैं। तो इसलिए किसानों को रासायनिक और जैविक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती कम लागत की है, यानी इसमें शून्य लागत हो जाती है। यदि हम एक देसी गाय को और साथ में सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि पशुधन और अपना ये है कि पौधे और वनस्पतियों को भी यदि हम कृषि के साथ सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमारी ये बिल्कुल जीरो बजट खेती हो जाती है।
0: जी, अरविंद जी ये बताइए कि ये जो कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ पूंजी तो लगती ही है, विशेष करके कृषि क्षेत्र में। हम देखते हैं कि मिट्टी तैयार करना है
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसको उसकी जुताई करनी होगी, अगर उसमें बीज बोना है तो बीज खरीदने होंगे,
1: जी
0: खाद डालने होंगे, कुछ कीटनाशक डालने होंगे,
1: जी
0: सिंचाई करनी होगी, ये सारे काम जो है इसमें तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो कैसे जीरो बजट वाली खेती आप बता रहे हैं प्राकृतिक खेती में होती है, कुछ
1: जी सर,
0: बताएं।
1: मैं सच कह रहा हूं कि ये वास्तव में प्राकृतिक खेती यदि हम करेंगे तो वो जीरो बजट ही हो जाती है। देखिए वो कैसे कि हम एक देसी गाय को सबसे पहले रखते हैं, तो देसी गाय का गोबर और उसका गौमूत्र, गुड़ और बेसन और सूक्ष्म जीव युक्त तो मिट्टी, जो जंगल की मिट्टी जहां कोई भी रासायनिक तत्व तो न पहुंचा हो, जब हम इन चीजों को सम्मिलित करेंगे, तो जब देसी गाय हमारे घर की है, इन्हीं चीजों से गुड़ घर का है, बेसन घर का है, हमने जीवामृत बना लिया या घन जीवामृत, तो इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा, केवल हमारा थोड़ा सा समय लगा बस। तो खाद जो हमने तैयार की ये हमारी बिल्कुल फ्री में बन के तैयार हो गई। सर अब आ जाइए आप कीटनाशक पे, कि कीटनाशक हमें जो प्रकृति ने पेड़ पौधे दिए हैं, जैसे नीम है, धतूरा है, अकोड़ा है, कनेर है, तो इन चीजों की पत्तियों को मिला के और हमें जो है कि अपनी फसलों से, जैसे हल्दी है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल भी है, ये अदरक है ये भी एंटीफंगल है, इसी तरीके से जो है अदरक, हरी मिर्च, तंबाकू, इन सारी चीजों को मिश्रित करके हम इनका मिश्रण बनाते हैं, उनसे हम तरह तरह की दवाइयां तैयार करते हैं, जैसे कि नीमास्त्र है जो नीम की पत्ती, गाय का गोबर, गौमूत्र, इनको मिक्स करके हम बना लेते हैं,
0: जी
1: इसे हम अपने फसलों पर छिड़काव करते हैं, हमारा कोई भी कीड़ा हमारी फसल पर अटैक नहीं कर पाता है।
0: जी हाँ जी
1: हम ये जो है प्राकृतिक विधि द्वारा हम ये अपनी कीटनाशक भी हमने फ्री में तैयार कर लिया। और प्राकृतिक खेती का नियम है कि जुताई नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रकृति ने हलवाहे दिए हैं केचुआ, वो 24 घंटे दिन रात हमारी ये खेती में जुताई करते रहते हैं, तो हमारा जुताई का पैसा यहाँ पे बचेगा जब प्राकृतिक हम करेंगे। बीज का रहा, बीज हमें देसी बीज का चयन करना है, जो बीज हम सैकड़ों वर्ष तक उसी को पलट पलट के बोते रहेंगे, तो जब अपने घर का है फ्री का, तो सर ना हमारी जुताई का पैसा लगना है, सिंचाई का हमारा 10% पैसा लगना है केवल, क्योंकि हम जमीन पे मल्चिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पौधे को केवल वापसा की जरूरत है, ना कि पानी की, वाष्प की, तो केवल 10% पानी यूज करता है पौधा, तो हमारी जो है लागत में जुताई में कोई लागत नहीं आई, बीज हमारे घर का हो गया, खाद हमारे घर की हो गई, कीटनाशक हमारे घर का हो गया और सिंचाई भी मात्र 10%। तो हम कुल मिला के ये मान के चलते हैं कि रासायनिक या जैविक खेती में जो 70% हम खर्च कर रहे हैं,

0: वो हमारा घट के केवल 10% रह जाता है। तो सर वही बात है कि 10% अगर लागत लग रही है तो वो कोई लागत नहीं, उसको हम जीरो ही कहेंगे सर।
1: अच्छा, अब बताएं कि अगर जो हमारे सामान्य किसान हैं
0: जी
1: जिनके पास खेत है, वो अगर जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं
0: जी
1: तो इसके लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, कितना खेत हो तो वो ये काम कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि उसके साथ कीटनाशक वाले पौधे भी लगाने होंगे, फिर एक गाय रखनी होगी देसी, उसके लिए भी
0: जी जी
1: चारा और उसके लिए भी व्यवस्था करनी होगी, तो
0: बिल्कुल।
1: कितना खेत हो कि मिनिमम काम चल जाए?
0: वैसे सर अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो उस व्यक्ति के पास अगर आधा एकड़ जमीन भी है तो उस परिवार का खर्चा साल भर का चल जाएगा
1: जी
0: और गाय का भी हो जाएगा,
1: हाँ,
0: क्योंकि गाय के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है सहयोग कर रही है,
1: जी
0: किसान को गाय फ्री में दे रही और उसको खिलाने के लिए 1500 रुपए पर मंथ सरकार देने लगी, वो भी मिल जाएगा प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को। और जो खेत में जो भी अन्न होगा या फल होंगे सब्जियां होंगी उनको तो हम खाएंगे, और उसका जो चारे के रूप में वेस्टेज बचेगा वो हमारी गऊ के लिए गाय के लिए उसके लिए भोजन बन गया। ये क्रम सर चलता है, जैसे खेत से हमने जो एक उत्पादन लिया खाद्यान्न सब्जी फल ये तो हमारे लिए हो गई, उसका जो वेस्टेज बचा वो हमने अपनी गाय को खिला दिया चारे के रूप में, गाय ने हमें गोबर दे दिया, वो गोबर फिर हमारा खाद के रूप में उसी खेत में फिर पहुंच गया, उसी से फिर सारा यानी क्रम चलता रहता है। तो
1: जी
0: इस हिसाब से जो है अगर आधा एकड़ खेत भी है किसी भी किसान के पास में और 5 सदस्य हैं परिवार में तो उनका भरण पोषण बड़े आराम से हो सकता
1: तो
0: है।
1: श्रम शक्ति की क्या स्थिति है कि अगर वो 5 लोग हैं, पांचों अगर खेत में लगे रहें तो ये सारा काम आसानी से हो जाएगा? क्या 5 से कम लोग अगर काम करने वाले हों तब क्या होगा आधे एकड़ पर?
0: उसमें सर सिर्फ जो है 2 लोग काम करते रहें और 3 लोग फ्री रहें तब भी उनका काम चलता रहेगा,
1: जी,
0: क्योंकि हमें जुताई करनी नहीं, कृषि यंत्रों की हमें जरूरत नहीं, तो इस वजह से मुझे जो है ज्यादा श्रम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल 2 व्यक्ति श्रम करें और 3 व्यक्ति कुछ भी करते रहें।
1: अच्छा, आप प्रगतिशील किसान हैं, आपने कितने एकड़ में ये प्राकृतिक खेती की है?
0: हम इस समय सर जो है 3 एकड़ में
1: जी
0: प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें 1 एकड़ में हमने ये है कि
1: जी क्या बागवानी में क्या क्या किया?
0: बागवानी में हमारे 1 एकड़ में लगभग 70 प्रकार के फलदार वृक्ष हैं, मसाले के वृक्ष हैं और औषधि पौधे लगे हुए हैं,
1: अच्छा, क्या क्या औषधीय पौधों में क्या क्या?
0: जिसमें ये है कि जैसे औषधि पौधों में हींग का पौधा है,
1: हाँ
0: छोटी इलायची, बड़ी इलायची,
1: हाँ
0: काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये चीजें हमारी इसमें आ
1: जी
0: गई।
1: जी
0: अब ये मसाले में जैसे
1: अश्वगंधा की खेती नहीं करते आप?
0: हाँ जी अश्वगंधा है, सतावर है,
1: हाँ,
0: ये भी जो है
1: जी, और फलदार पौधों में क्या लगाया आपने?
0: फलदार में सर जैसे थाई एप्पल बेर है अपना जी है कि सेब है, अमरूद है, ताइवान पिंक और अन्य वैरायटी, और सेब, संतरा, किन्नू, नींबू, नाशपाती, फाल से, पपीता, यानी कि 35 से 40 प्रकार के फलदार पौधे हैं। और
1: बहुत,
0: सब्जी में हम सभी प्रकार की सब्जियां सीजनेबल, हर सीजन की
1: हाँ, सीजन
0: उनका भी
1: वाले
0: हम उत्पादन लेते हैं,
1: जी,
0: मसाले हर सीजन के, जैसे
1: हाँ
0: अभी रबी में हमने धनिया और जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन ये सब बो दी है,
1: जी।
0: तो ऐसे
1: और
0: ही
1: तो
0: हम इन
1: अब ये
0: सबका
1: बताएं कि इनसे जो उत्पादन होता है वो कितना उत्पादन हो जाता है, क्योंकि इसमें आप कोई रासायनिक खाद नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो उत्पादन इतना हो जाता है कि आपका जो परिवार है वो चल जाए और कुछ बिक्री भी हो जाए?
0: जी सर, क्योंकि ये तो 1 एकड़ का रहा और
1: जी
0: बाकी का 2 एकड़ है उसमें हम जो है कि खाद्यान्न, दलहन, तेलहन ये भी सारा कुछ करते हैं।
1: हाँ
0: तो अब जो है कि रही बात ये कि अपना खर्चा कैसे चलता है, तो उसमें जैसे कि हमें एक तो प्राकृतिक चीजें करने में
1: जी
0: शुरू में जब हमने स्टार्टिंग की थी उस समय हमें उत्पादन कम मिला था, और ये फैक्ट है कि
1: जी
0: हम जैसे ही रासायनिक को छोड़ते हैं और प्राकृतिक खेती को शुरू करते हैं तो हमारा उत्पादन गिर के 60% पे आ जाता है,
1: हाँ,
0: 80 से 60%।
1: तो उस समय धैर्य रखने की आवश्यकता है
0: बस
1: किसान
0: बस
1: को।
0: सर, तो वो किसान अगर 2 वर्ष तक लगातार उसको जो है कि न देखे
1: हाँ,
0: कि हमें लॉस हो रहा तो 2 वर्ष में वो अपना जो है बराबर लेवल पे आ जाता है, फिर हमारी 70% जो लागत है हम पहली साल से ही देखें अगर, तो जो हम 70% लागत हमारी जो बचेगी तो हमें वो भी जो है 40% जो घट रहा है वो भी हमारा कहीं भी नहीं लॉस में हम जा रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी जी जी तो बहुत अच्छी बात आपने बताई अरविंद जी। ये तो है कि किसान अगर हमारे ध्यान दें और इस दिशा में सोचना शुरू करें तो निश्चित है कि वो लाभान्वित होंगे और
0: जी
1: उनका परिवार स्वस्थ होगा
0: जी
1: और वातावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।
0: जी
1: तो अरविंद जी चल

0: चलते हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहेंगे?
1: हम अपने सभी भाइयों से, किसान भाइयों से ये कहेंगे कि आप रासायनिक खेती को छोड़ें, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, वो बीमारियां तभी खत्म होंगी जब हम अपना स्वस्थ भोजन खाएंगे, और स्वस्थ भोजन हमें जब ही मिलेगा जब हम उनको प्राकृतिक रूप से अपने खेती में तैयार करेंगे। तो हम किसानों से, अपने भाइयों से यही कहेंगे कि आप लोग रासायनिक खेती को छोड़िए और प्राकृतिक खेती को अपनाइए।
0: जी। तो अरविंद प्रताप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो आए और प्राकृतिक खेती के विषय में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था प्राकृतिक खेती से लाभ। प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह से भेंट कर रहे थे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण। और साथियों, अब वक्त है कार्यक्रम में मंडी भाव का। आलू का भाव रहा 500 रुपए से 510 रुपए प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 800 रुपए से 810 रुपए, हरा धनिया का भाव रहा 11,142 से 11,152 रुपए, प्याज 800 रुपए से 810 रुपए, टमाटर का भाव रहा 600 से 610 रुपए प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2,200 से 2,460 रुपए, करेले का भाव रहा 1,900 से 2,210 रुपए, फलों में पपीते का भाव रहा 2,600 से 3,010 रुपए प्रति क्विंटल, अनार 6,000 से 6,810 रुपए, सेब 13,000 से 600 रुपए, और आम सफेदा का भाव रहा 4,000 से 4,610 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये था किसान साथियों मंडी भाव। और साथियों, आप जानते हैं कि गर्मी के तेवर चढ़ रहे हैं, लू के थपेड़े हाल बेहाल कर रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, पानी, गमछा, चश्मा, छाता साथ रखें, व साथ ही रखें मौसम की जानकारी अपने साथ। तो जानते हैं मौसम का हाल। बीते 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 41 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और इसके साथ ही आज का ग्रामीण लोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपने मित्र उमा अली को अनुमति दीजिए। राम राम।

ये था हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्य लोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक दोस्तों, मजदूर मंडल कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं संतोष वर्मा। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने कार्यक्रम में, जहां बात होती है हमारी श्रम शक्ति की। इसी श्रम शक्ति से, अपनी जागरूकता से जीवन को बेहतर बनाने की। और जब हम जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, सुबह का सूरज कब दोपहर की तपिश में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में खेतों, कारखानों, निर्माण स्थलों, दुकानों और सड़कों पर काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दिन भर पसीना बहाना, तेज धूप में काम करना और समय पर आराम ना मिल पाना शरीर के कमजोर होने के कारण हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। बार बार प्यास लगना, सिर भारी होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थकान होना, ये सब संकेत है कि शरीर को देखभाल की ज़रूरत है। मगर हमारे

0: बहुत से मेहनतकश साथी तो ये सोचकर काम करते रहते हैं कि थोड़ी थकान तो चलती है। यही लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो इस मौसम में सबसे जरूरी है शरीर में पानी की कमी ना होने देना। इसीलिए प्यास लगे या ना लगे, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। नींबू पानी, छाछ, लस्सी या नमक चीनी का घोल पीना भी इन दिनों फायदेमंद है। सादा लेकिन पौष्टिक भोजन करें, यानी दाल रोटी, हरी सब्जियां, प्याज और मौसमी फल, ये शरीर को ताकत देते हैं। धूप में काम करते वक्त गमछा या सूती कपड़ा हल्का गीला करके गर्दन पर रखें तो इससे गर्मी से राहत मिलेगी और लू से बचाव होगा। कोशिश करें कि लगातार कई घंटों तक बिना रुके काम ना करें। 2 मिनट का छोटा सा आराम भी शरीर को बड़ी राहत देता है। दर्द, बुखार या थकान में अपने आप से ही दवाइयां खाना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कई छोटी छोटी समस्याओं के लिए तो हम घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। ऐसा ही एक टिप्स है दोस्तों कि अगर पेट में गैस या भारीपन की शिकायत हो तो आधा चम्मच अजवाइन और एक चुटकी काला नमक गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं, इससे राहत मिलेगी। हमारे जो बहन भाई दिन भर धूल मिट्टी या वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्हें अक्सर आंखों में जलन और आंखें लाल होने की शिकायत रहती है। इसके लिए सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर एक चूर्ण बना लें। रात को दूध के साथ इस चूर्ण का 1 चम्मच सेवन करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी और यह शरीर की गर्मी कम करने में भी फायदेमंद है। दिन भर की भागदौड़ और शोर में रहने के बाद अगर दिमाग शांत ना हो, नींद ना आए, तो रात को सोते समय पैरों के तलवों पर थोड़ी देर सरसों के तेल की मालिश करें। इससे न सिर्फ गहरी नींद आती है, बल्कि सुबह उठने पर आंखों में भी एक नई ताजगी आ जाती है। काम के दौरान धूल और धूप से चेहरा जब बुझा बुझा सा हो जाए तो कच्चे दूध में पिसी हुई हल्दी और बेसन मिलाकर इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे की कुदरती चमक वापस आ जाएगी। ये सेहत टिप्स या कहें कि घरेलू नुस्खे बहुत उपयोगी हैं दोस्तों, जो महंगे भी नहीं हैं और आसानी से हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर कोई बड़ी समस्या हो तो बिना देरी किए इलाज कराना चाहिए। जीवन में सारे काम जरूरी हैं, पर अच्छा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। तन मन से सेहतमंद होने पर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं, फिर चाहे बात मेहनत की, हुनर की हो या सौदेबाजी की। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हमें कई समझौते और सौदे करने पड़ते हैं। कभी सौदा समय का, कभी सपनों का और कभी कभी अपने स्वाभिमान और भावनाओं का। कुछ सौदे हमें आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कीमत बहुत देर से समझ में आती है। आइए सुनते हैं रिश्तों, परिस्थितियों और भावनाओं को दर्शाती ज्योति श्रीवास्तव की ऐसी ही एक कहानी, सौदा।
1: सावन का महीना लगभग 15 दिन बीतने को है और बारिश का अभी नामो निशान नहीं है। वह तो भला हो आषाढ़ के बादलों का, जिसने छुटपुट बूंदें बरसाई थी, जिससे प्रकृति अपने सावन के रूप में हरी भरी तो दिख रही है, पर नभ में सूर्यदेव ऐसे चमक रहे हैं जैसे सावन को जेठ की दोपहरी परोस रहे हों। जिसे देखो वही गर्मी से परेशान है। अलकनंदा भी अपने कामकाज से फुर्सत होते ही थोड़ी देर के लिए घर के सामने ही अपने प्यारे से चौसा आम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर थोड़ा आराम करने लगती है। वह अपने आसपास के वृक्षों से बातें करने लगती है, मानो उनसे पूछ रही हो कि कैसे हो तुम लोग। फल लदे वृक्ष झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, किंतु आज अलकनंदा का मन थोड़ा खिन्न सा था। वह सोचती है प्रकृति हमसे किस बात का बदला ले रही है। फिर उसे

रामचरित मानस की चौपाई याद आती है। जब जब होई धर्म की हानि, आगे की पंक्तियां अलकनंदा को याद नहीं आ रही थी, पर वह सोचती है कि सच है, जब जब मानव में मानव धर्म और मानवीय मूल्यों का अभाव होता है, नैतिक मानदंडों को धाराशाही किया जाता है, हमारे संबंध स्वार्थ के खोखले ढांचों पर टिके होते हैं, फिर ऐसे में प्रकृति भी अपना प्रकोप तो बरसाती ही है। देखो तो सावन बीतने को है और बारिश का नाम नहीं। ऐसा सोच ही रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोरियर वाला कोई ऑर्डर लेके आया था। वह उसको लेकर देखने लगी। अलकनंदा को कोई नया ऑर्डर मिला है। एक बात तो है, इन दिनों में चांदीपुर गांव में दो ही बातें बड़ी चर्चा में हैं। एक अलकनंदा और उसके आम के बागान, जहां से आमों का निर्यात विदेशों में भी किया जा रहा है। कहते हैं ना, श्रम को अगर बुद्धि की सही दिशा मिल जाए तो धरती सोना उगलने लगती है। बचपन में जिन आमों का नाम हम सिंदूरिया आम के नाम से जानते थे, उसे ही अलकनंदा ने रोज गोल्ड नाम देकर विदेशों में भारतीय आम की धूम मचा दी है। आम मानो खास हो गया है। तिवारी जी के दो ही बच्चे हैं, अलकनंदा और उसका भाई शांतनु। अलकनंदा MBA की पढ़ाई के बाद गांव में ही रहकर तिवारी जी की विरासत संभाल रही थी। उसने अपना कर्म क्षेत्र आम के बागानों को ही बनाया था और उसका भाई शांतनु IIT से MTech कर सॉफ्टवेयर की गलियों में अपना हुनर बिखेर रहा था। तिवारी जी तो अब रहे नहीं, उनके पीछे अलग

उसने अपना कर्म क्षेत्र आम के बागानों को ही बनाया था और उसका भाई शांतनु आईआईटी से एमटेक कर सॉफ्टवेयर की गलियों में अपना हुनर बिखेर रहा था। तिवारी जी तो अब रहे नहीं, उनके पीछे अलकनंदा ही गांव में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। शांतनु तो शायद पिछले 10 वर्षों से गांव आया ही नहीं, पर आज गांव में यह भी चर्चा है कि शांतनु आने वाला है। अलकनंदा ने भाई के स्वागत की अच्छी तैयारी की है। कामगारों से कहकर आम की सबसे उच्च किस्में उसने शांतनु के लिए रखवा दिए हैं। घर को सजाने का हुनर तो अलकनंदा को आता ही था, पर आज उसने घर को एक विशेष अंदाज में सजाया है। तोरण द्वार के बीच बीच में सुंदर सुंदर रक्षाबंधन वाली राखियां भी बांधी हैं। भाई बहन का स्नेह मुख्य द्वार पर ही झलक रहा है। अलकनंदा ने चंदन को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और वह चंदन के साथ गाड़ी से एयरपोर्ट वाले रास्ते की ओर चल दी। अलकनंदा के गांव से एयरपोर्ट की दूरी यही कोई 8-10 किलोमीटर ही है। अपनी गुलाबी रंग की साड़ी में अलकनंदा आज बहुत ही प्यारी लग रही है। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अलकनंदा की नजरें सड़क के दोनों ओर किनारे पर लगे शीशम के वृक्षों पर पड़ी। बचपन से ही इन रास्तों पर शीशम के वृक्षों को देखते आ रही है। कितने वृक्ष काटे भी जा चुके हैं। अलकनंदा चंदन से पूछती है, चंदन, आजकल शीशम के वृक्ष की क्या कीमत है? चंदन अपने सामान्य ज्ञान का बखान करते हुए कहता है, दीदी, एक वृक्ष यही कोई 80-90 हजार में तो बिक ही जाता है। तब तो अलकनंदा हंसने लगती है और कहती है, आम के साथ साथ शीशम के वृक्षों का भी बिजनेस किया जा सकता है। चंदन भी उसकी हौसला अफजाई करता है, क्यों नहीं दीदी? पर अलकनंदा एक संतोष भरी मुस्कान के साथ कहती है, ना भाई, मेरे तो आम ही खास हैं, कितने ही दिलों पर राज करते हैं। यह न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक इनकी धूम मची हुई है। हर दिल में एक मिठास पैदा कर देते हैं। उसकी बातचीत अभी चल ही रही थी कि एयरपोर्ट भी आ गया। अलकनंदा ने देखा शांतनु नीले रंग की जीन्स और हल्के हरे रंग के शर्ट में काफी जच रहा था। दौड़कर उसने शांतनु के गले से गले मिल लिया। शांतनु भी प्यार से उसे गले लगा लेता है और चुटकी लेते हुए कहता है, मेरी बिजनेस वुमन बहन कैसी है? तेरे रोज गोल्ड वाले आम तो अंतरराष्ट्रीय हो गए हैं। फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल पड़ते हैं। शांतनु कुछ गंभीर सा था। अलकनंदा ने उसकी गंभीरता तोड़ते हुए पूछा, भाई, भाभी और बच्चों को नहीं ले आए? शांतनु, जो गांव की ओर बढ़ते हुए रास्तों के हरे भरे खेत खलियान को देख रहा था, बोला, तू तो जानती है अलकनंदा, बाहर की दुनिया में लोग कितने व्यस्त हैं। तेरी भाभी और बच्चे अपनी अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि वह यहाँ आने के लिए राजी ही नहीं हुए। वो तो गांव की जमीन का सौदा ना होता तो शायद मैं भी नहीं आ पाता। सौदा? अलकनंदा थोड़ा चौंक जाती है। अब मैं तो हमेशा गांव आ नहीं सकता, फिर इस गांव की जमीन का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अलकनंदा की खुशियों पर मानो भादों की तीव्र बिजली गिर पड़ी। भाई, तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। तुझसे क्या पूछना? मैं तेरे रोज गोल्ड वाले आम के बागान थोड़े बेच रहा हूँ। भैया, तुझे याद है ना, बाबूजी ने यह जमीन कितनी मेहनत से खरीदी थी। गांव की जमीन की सोंधी खुशबू में उनकी सांसें बसती थीं। तू पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय उसे मिटाने आया है। एक बात बता देती हूँ, मैं अपने हिस्से की जमीन को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तेरा हिस्सा? हाँ, मेरा हिस्सा। अलकनंदा, तू कैसी बातें कर रही है? गांव में सब क्या कहेंगे? तिवारी जी की बेटी मायके में अपनी जमीन का हिस्सा ले रही है। और भैया, तुम्हें क्या कहेंगे लोग?
तिवारी जी का बेटा।

0: 10 बरस बाद आया भी तो गांव की जमीन बेचने के लिए, जिसे बाबूजी ने इतनी मेहनत से बनाया था। शांतनु की आंखों में स्वार्थ की एक अजीब सी ज्वाला धहक रही थी। अलकनंदा, यह सब किताबी बातें हैं जो किताबों में ही अच्छी लगती हैं। यथार्थ के धरातल पर इनका कोई मोल नहीं है। अब मैं विदेश से बार बार गांव में इस जमीन की देखभाल तो कर नहीं सकता, फिर इसको रखने का क्या मतलब है? ठीक है भाई, बाबूजी की विरासत की 50% की हकदार मैं भी हूँ। मेरा हक छोड़कर तेरा जो जी में आए वो कर। और इतना कहते कहते अलकनंदा के आंखों में आंसू आ गए। रक्षाबंधन वाले काले सूत, कच्चे सूत के धागे मानो टूट टूट कर बिखर गए हों। दोनों ने एक सन्नाटे के साथ चुपचाप चांदीपुर गांव में प्रवेश किया, और पल भर पहले चांदीपुर गांव की वह हवेली जहां इतनी चहल पहल दिख रही थी, एक सन्नाटा सा पसर गया। और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक मधुर सी आवाज आई जो भीतर की ओर से आ रही थी। अलकनंदा की सहेली वर्षा आरती की थाली लेकर आ रही थी, लेकिन अलकनंदा ने वर्षा को रोकते हुए कहा, रहने दे वर्षा, अब आरती की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षा कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक अलकनंदा को क्या हो गया? अभी तक तो बहुत खुश थी। भाई आएगा तो यह करूंगी, भाई आएगा तो वह करूंगी, अब क्या हो गया? स्कूल के दिनों में शांतनु को वर्षा पसंद करने लगी थी। कैसे हो शांतनु? वर्षा ने शांतनु के चेहरे को निहारते हुए पूछा, जिस पर वक्त की लकीरों ने अपना हिसाब किताब कर रखा है। ठीक हूँ शांतनु, बस इतना ही बोल पाया। वर्षा को याद है बचपन के दिनों में शांतनु उसके पसंद के मीठे मीठे आम कैसे ऊंची ऊंची डालियों से तोड़ लाता था। अलकनंदा वर्षा की जिज्ञासा शांत करते हुए बताती है, सुनो वर्षा, भाई हम लोगों से मिलने या गांव की सुध बुध लेने नहीं आए हैं, यह तो गांव की जमीन का सौदा करने आए हैं।
1: श्रमिक दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे ज्योति श्रीवास्तव की कहानी सौदा। ये जरूरी नहीं दोस्तों कि सौदे हमेशा हमारी मर्जी से हों, लेकिन अगर बात महिलाओं की हो तो हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी श्रमिक बहनें अपने आप को आधुनिकता से जोड़कर चलें, यानी डिजिटल रूप से इतनी सक्षम हों कि आज के डिजिटल युग में नए जमाने से कदम मिलाकर चल सकें। डिजिटल कुशलता हासिल करके हमारी माताएं बहन बेटियां पूरी दुनिया देख सकती हैं और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा सकती हैं। हमारी जो बहन बेटियां डिजिटली कुशल हैं वो अपना और अपने परिवार का जीवन आसान बना भी रही हैं, ऑनलाइन पैसे भेज रही हैं, मंगा रही हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़ रही हैं, कुछ तो घर बैठे बैठे व्यवसाय भी चला रही हैं, जैसे सिलाई करके कपड़े और घर की जरूरत की दूसरी चीजें बनाकर ऑनलाइन बेचना। यह एक नई आत्मनिर्भरता है, लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी है। आज भी कई महिलाएं मोबाइल हाथ में लेने से डरती हैं, कई घरों में उन्हें यह कहकर रोक दिया जाता है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत। कई श्रमिक बहनें तो पढ़ लिख नहीं पाती तो डिजिटल दुनिया उन्हें कठिन लगती है। ऐसी ही स्थितियों में परिवार और समाज की जिम्मेदारी शुरू होती है कि अगर घर का बेटा मोबाइल चला सकता है तो बेटी क्यों नहीं, अगर पुरुष ऑनलाइन बैंकिंग सीख सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं, अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी मेहनतकश बहन बेटियां क्यों ना आगे बढ़ें। दोस्तों, जब एक महिला डिजिटल रूप से जागृत होती है तो पूरे परिवार को इससे फायदा है। बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाती है, घरेलू खर्च का हिसाब आसान हो पाता है, धोखेबाजी से बचाव होता है और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए घर की महिलाओं बहन बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर जरूर दीजिए, उन्हें डराएं नहीं बल्कि सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। डिजिटल युग केवल मशीनों का युग नहीं है दोस्तों, यह अवसरों का युग है और इन अवसरों पर महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों का।

आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां मेहनतकश महिलाएं केवल घर और काम तक सीमित न रहें, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बनाएं। लेकिन ये पहचान प्रगति की हो, आगे बढ़ने की हो। ऐसा ना हो कि हम नई चीज को सीखकर जोश में उसका लापरवाही से इस्तेमाल करने लगें और इससे किसी मुसीबत में फंस जाएं या नुकसान उठाना पड़े। आजकल डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले बहुत देखने को मिलते हैं, इसीलिए माताओं बहनों को इस डिजिटल युग में कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। अक्सर मुफ्त इनाम या लॉटरी का लालच दिया जाता है, जो कि एक धोखा हो सकता है। अपनी निजी जानकारी, बैंक का पासवर्ड, ओटीपी या आधार नंबर किसी अनजान कॉलर को ना दें। बैंक के द्वारा कभी भी कॉल करके ऐसी जानकारियां नहीं मांगी जाती। सोशल मीडिया पर भी अपनी फोटो, वीडियो या घर परिवार की जानकारी सोच समझकर ही साझा करें। हर तरह से सावधान रहें कि हमारी डिजिटल दुनिया खतरे की घंटी ना बन जाए। तकनीक दोस्तों एक दुधारी तलवार की तरह है, अगर सही से चलाएंगे तो ढाल बनेगी और अगर लापरवाही बरती तो चोट भी लग सकती है। तो हमारी बहन बेटियां खुद को इतना काबिल बनाएं कि तकनीक का इस्तेमाल तरक्की के लिए करें, ना कि किसी धोखे का शिकार बन जाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि डिजिटल उपकरणों में इतना ना खो जाएं कि घर की जिम्मेदारियां ही भूल जाएं। हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार के प्रति भी, समाज और देश के प्रति भी। देशवासियों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानकर निभाया था, तभी हमारा देश आजाद हुआ। देश को आजाद कराने की इस लड़ाई में भारत माता के दो बहादुर बेटे ऐसे भी थे जिनका जन्म एक ही वर्ष में हुआ था और उन्होंने एक साथ फांसी के फंदे को चूमकर मौत को गले लगाया था। कार्यक्रम में आज का प्रश्न यही है कि कौन थे वो बलिदानी क्रांतिकारी। कार्यक्रम में आपको उसका जवाब भी देंगे, लेकिन पहले बात ज्ञान सागर की। आज 13 मई है दोस्तों, इस दिन प्रसिद्ध साहित्यकार आर के नारायण की पुण्यतिथि है। आइए आज के ज्ञान सागर में बात करते हैं इन्हीं के बारे में। रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में तीन सबसे महान उपन्यासकारों में से एक हैं। मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के बृहत्त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। उपन्यास तथा कहानी की विधा को अपनाते हुए आर के नारायण ने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया है। अपनी दादी के पालन पोषण में बड़े हुए नारायण जी ने 1930 में अपनी शिक्षा पूरी की, कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य किया और फिर पूरी तरह से अपने आप को साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। उनके पहले उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स में स्कूली लड़कों के रोमांचक कारनामे हैं। नारायण जी आमतौर पर अपनी रचनाओं में मानवीय संबंधों की विशेषताओं का, भारतीय दैनिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करते हैं जिनमें आधुनिक शहरी जीवन पुरानी परंपराओं से टकराता है। उनकी शैली शालीन है जिसमें गंभीर यथार्थ तो है ही, साथ ही सुसंस्कृत हास्य, लालित्य और सहजता भी है। उनका पहला उपन्यास 1935 में आया, इसी साल दूसरा उपन्यास आया स्नातक। यह उपन्यास एक संवेदनशील युवक चंदन की कहानी है जो प्रेम और विवाह संबंधी पश्चिमी विचारों तथा अपने सामाजिक ढांचे के बीच के द्वंद्व को प्रस्तुत करता है। 1938 में आया उपन्यास डार्क रूम दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों और घटनाओं के विवरण से बुनी गई कहानी है। उनका स्वतंत्रता से पहले का अंतिम उपन्यास द इंग्लिश टीचर पति पत्नी के प्रेम की ऐसी कहानी है जिसका अंत अविश्वसनीय है। नारायण जी की रचनात्मक श्रेष्ठता का स्वर्ण युग देश की स्वतंत्रता के बाद आया जब इनके तीन सबसे लोकप्रिय उपन्यास प्रकाशित हुए। 1952 में द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1958 में गाइड और 1962 में मालगुड़ी का आदमखोर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना गाइड उनकी रचनात्मक

का शिखर है। मालगुड़ी का आदमकोर में उन्होंने अपने नैतिक सरोकारों को भस्मासुर की प्राचीन पौराणिक कथा के संदर्भ को आधुनिकता के साथ पुनः सृजित कर अभिव्यक्त किया है। इसके बाद की दो रचनाओं महात्मा का इंतजार और मालगुड़ी का मिठाई वाला की पृष्ठभूमि में गांधीवादी संघर्ष है। नारायण जी ने एक काल्पनिक शहर मालगुड़ी को आधार बनाकर कई उपन्यास और कहानियों की रचना की है। खुद उन्होंने कहा भी है कि अगर मैं कहूं कि मालगुड़ी दक्षिण भारत का एक कस्बा है तो यह भी एक अधूरी सच्चाई होगी, क्योंकि मालगुड़ी जैसा जनजीवन दुनिया के लगभग हर हिस्से में है। उनके मालगुड़ी पर आधारित साहित्य पर दूरदर्शन ने एक धारावाहिक भी बनाया था जिसका नाम था मालगुड़ी डेज। इस टीवी शो में ना कोई दिखावा था ना ही भारी भरकम ड्रामा, बस साधारण लोगों की सच्ची और भावनात्मक कहानियां थी। शो में आज की तेज रफ्तार, शोर या सनसनी नहीं थी, फिर भी हर एपिसोड दिल में उतर जाता था और उसका शीर्षक संगीत जैसे ही धुन बजती लगता जैसे शांत पुरानी और अपनी सी दुनिया में पहुंच गए हैं। मालगुड़ी डेज भारतीय टेलीविजन की सबसे आत्मीय यादों में से एक है। इसके सारे एपिसोड आज भी YouTube पर देखे जा सकते हैं। कई पुरस्कार जीतने वाले आर के नारायण को भारत सरकार ने 1964 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 13 मई 2001 को चेन्नई में इस महान साहित्यकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर हम सबके लिए अपना पूरा रचना संसार छोड़कर गए हैं। उनकी रचनाओं में आज भी हम सबके लिए एक संदेश है कि जीवन की सादगी और रिश्तों की मजबूती ही हमें खुश रख सकती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनों से मुंह ना मोड़ें, बल्कि उनकी अहमियत को समझें। हमेशा उनके शुक्रगुजार रहें जिन्होंने हमारी जिंदगी में चाहत के रंग भरे हैं, जीवन भर का साथ निभाया है।

श्रमिक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आज एक महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर जी की जयंती है। दोस्तों, सुखदेव जी का जन्म 15 मई

1907 को लुधियाना में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह पर मुकदमे का नाटक रचाकर 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। सरदार भगत सिंह का जन्म भी 1907 में हुआ था, यानी भगत सिंह और सुखदेव का जन्म एक ही सन में हुआ था और दोनों एक ही दिन में बलिदान हो गए। ये था दोस्तों आज पूछे गए प्रश्न का जवाब, और इसी के साथ आवाज का मजदूर मंडल कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। मैं संतोष वर्मा फिर मिलूंगा आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़

0: में है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices or MSP for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
1: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme aims to incentivize new surface coal and lignite gasification projects for production of syngas and its downstream products target

नस्ली भेदभाव की बुराई की ओर इंगित करता है। नस्लवाद एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार मनुष्यों को नस्ल के आधार पर अलग और विशिष्ट जैविक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इसके अनुसार विरासत में मिली भौतिक एवं शारीरिक विशेषताओं का संबंध व्यक्तित्व, बुद्धि, नैतिकता तथा अन्य सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं से होता है। ऐसी सोच रखने वाले कुछ नस्लों को श्रेष्ठ एवं कुछ को निम्न मानते हैं। नस्लवाद के अनेक रूप हैं। नस्लवाद का प्रसार हमारी सोच, हमारे भीतर के विश्वासों में भी हो सकता है, जिसे हम इंटरनलाइज्ड रेशियलिज्म या नस्लवाद का आंतरिकीकरण कहते हैं। नस्लवाद जब आपसी व्यवहार में होता है तो उसे इंटरपर्सनल रेशियलिज्म या पारस्परिक नस्लवाद कहा जाता है। जब नस्लवाद संस्थाओं की नीतियों, कानूनों में पाया जाता है तो इसे इंस्टीट्यूशनल रेशियलिज्म या संस्थागत नस्लवाद कहते हैं। कभी कभी नस्लवाद संस्थाओं के आपसी अंतर्व्यवहार एवं समाज के व्यापक दायरे में पाया जाता है। यह इतिहास, संस्कृति, विचारधारा का परिणाम होता है। ऐसे नस्लवाद को संरचनात्मक नस्लवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नस्लवाद का विष संपूर्ण समाज को विषाक्त कर देता है। पूर्व में घटित बहुत सी बुराइयां जैसे दास प्रथा, उपनिवेशवाद इत्यादि के पीछे नस्लवाद की ही भावना थी। इंसान ने ही इंसान का शोषण किया एवं निम्न स्तर पर दुर्व्यवहार किया। दास प्रथा समाप्त होने पर साम्राज्यवादी राज्यों ने अपने एक उपनिवेश के लोगों को दूसरे उपनिवेश गिरमिटिया मजदूर बनाकर भेजने शुरू कर दिए। गन्ने, कपास, चाय के बागानों एवं खेतों में बहुत कम वेतन पर उनसे काम लेते एवं अवमानवीय व्यवहार करते। भारत से भी बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, गयाना, मलेशिया इत्यादि देशों में गए। नस्लवाद का भयावह रूप जर्मनी में यहूदियों की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वहां के लोगों में व्याप्त दीर्घस्थायी यहूदी विरोधी एंटी सेमिटिज्म भावना का लाभ नाजी पार्टी ने उठाया एवं यहूदियों का उत्पीड़न एवं सामूहिक हत्या की। 1941 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई, जिसने संपूर्ण विश्व को झकझोर दिया। लेकिन अपने को जनतंत्र का गढ़ समझने वाले उत्तरी अमेरिका में भी 1965 तक नस्लीय भेदभाव वाले जिम क्रो जैसे कानून लागू थे, जो प्रजातीय पार्थक्य को प्रोत्साहित करते थे। अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट 1954 से 1968 तक चला एवं अमेरिका में संस्थागत नस्लवादी पार्थक्य एवं भेदभाव समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति द्वारा नस्लवादी पार्थक्य को व्यवहार में लाया गया एवं वहां के मूल निवासी अश्वेतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। बहुत संघर्ष के उपरांत रंग भेद की नीति 1993 में पूर्ण रूप से अवैध घोषित हुई। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया, 27 वर्षों बाद जेल से रिहा हुए। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी रंग भेद नीति एवं नस्लवाद का प्रारंभ से ही विरोध किया। 21 मार्च 1960 को पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में लोगों द्वारा नस्लभेदी कानून के खिलाफ किए जा रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 69 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के समागम के अनुसार नस्लीय भेदभाव के आधार पर श्रेष्ठता वैज्ञानिक दृष्टि से गलत, नैतिक रूप से निंदनीय, सामाजिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण है। नस्लीय भेदभाव के लिए कोई औचित्य नहीं है, न ही सिद्धांत में और न व्यवहार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-16 एवं 29 नस्ल, धर्म तथा जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A भी नस्ल को संदर्भित करती है। भारत ने वर्ष

0: 1968 में नस्ली भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की पुष्टि की थी। इसके बावजूद भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव की घटनाएं हो जाती हैं। अमेरिका एवं यूरोप में भी अश्वेत लोगों के साथ दुर्व्यवहार एवं हिंसा की घटनाएं समय समय पर सुनाई पड़ती हैं। पुलिस भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है। 2012 में फ्लोरिडा अमेरिका में 17 वर्षीय अश्वेत बालक ट्रेवॉन मार्टिन की हत्या हुई एवं दोषित श्वेत व्यक्ति को आसानी से रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात वहां ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे विश्व के अनेक देशों में व्याप्त हो गया। 2020 में केंटकी अमेरिका में 13 मार्च को पुलिस द्वारा अश्वेत महिला ब्रियाना टेलर पर जानलेवा गोली चलाने की घटना हुई। 25 मार्च को मिनेसोटा में अश्वेत युवक जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या का वीडियो पूरे विश्व ने देखा। पुलिस उसके सीने को पैरों से दबा रही थी। वह अपनी माँ को पुकारता रहा, चीखता रहा, आई कांट ब्रीथ। थोड़ी देर में हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस घटना ने एक बार फिर नस्ली भेदभाव के विरुद्ध पूरे विश्व में आक्रोश को जन्म दिया। ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगाकर जगह जगह प्रदर्शन किया। 2022 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस की थीम है वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। नस्ली भेदभाव के विरुद्ध लोग बिना डर के आवाज उठा सकें। जो व्यक्ति एवं संस्थाएं नस्ली भेदभाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को मान्यता दी जाए, प्रोत्साहित किया जाए एवं सराहा जाए। नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क, माया एंजेलो, नेल्सन मंडेला जैसे लोग मार्गदर्शक रहे हैं। इन सभी का मानना है कि संपूर्ण मानव जाति एक समान है। हम सब एक उपवन के सुमन हैं। हमारे अरमान लक्ष्य एक ही तरह हैं। सभी लोग सम्मान सुख शांति से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। कुछ एक नासमझ एवं विकृत मानसिकता के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नस्लवाद का जहर फैलाकर माहौल दूषित करते हैं। अमेरिकन कवि रॉबर्ट लॉन्गले ने सही कहा है, जस्ट बीनीथ द सरफेस द सेल्स आर ऑल लुक द सेम, देर इज नो रेस और प्रोनाउंस, नो नीड टू कॉल देम नेम्स, क्लोज योर आईज टू सी देम, अचीवमेंट्स लुक अलाइक, दे ईच कैन लीड अ कंट्री, राइट अ बुक और राइड अ बाइक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों को हमें याद रखना चाहिए जब उन्होंने कहा, I look to a day when people will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. इनके इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को आज के
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार, प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति कुंतल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की MSP वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल NewsOnAIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओ, थोड़ा सा अगर हम सोचें तो क्या ये मानव जाति पृथ्वी पर अकेले जीवन यापन कर सकती है, जहां ना नदियां हों, ना पेड़ हों, ना पर्वत हों, ना पशु पक्षी हों? नहीं ना। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानव जीवन भी इन सभी के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम कहते हैं प्रकृति। श्रुतो, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी, सूर्य चंद्रमा और हवा, ये सभी प्रकृति ही की तो देन है। और हमारा जीवन यानी मनुष्य का जीवन इस प्रकृति पर ही आधारित है। सोचो, अगर ये प्रकृति न हो तो जीवन की कल्पना भी संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रकृति हमें जीवन देती है, शुद्ध वायु देती है, जल देती है, खाने के लिए भोजन देती है और रहने योग्य वातावरण प्रदान करती है। जी हां श्रोताओ, इसीलिए तो हम धरती को मां कहते हैं, क्योंकि वह हमें उसी प्रकार पालती पोसती है जैसे एक मां अपने बच्चों का पालन करती है। बेशक श्रोताओ, हम तकनीक के युग में बहुत आगे हैं, हमने बहुत प्रगति की है, परंतु इस प्रगति की दौड़ में क्या प्रकृति का हमने अत्यधिक दोहन नहीं किया? बिल्कुल किया है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, पानी की बर्बादी और बढ़ती जनसंख्या ने धरती मां को तो जैसे श्रोताओ घायल कर दिया हो। अब बारी सोचने की है। अगर अब भी हम समय रहते नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना तो करना ही पड़ेगा। श्रोताओ, आज प्रकृति को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। प्रकृति हम सभी की, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सभी की आधारशिला है, जीवन की आधारशिला है। हम चाहे कितना भी आधुनिक श्रोताओं क्यों ना हो जाएं, पर प्रकृति के बिना जीवित हम नहीं रह सकते। सुबह का उगता हुआ सूर्य हमें श्रोताओं नई ऊर्जा देता है, ठंडी हवा हमारे मन को खुश कर देती है, कलकल करती हुई नदियां हमें जल देती हैं, खेत खलिहान हमें अन्न देते हैं, पेड़ पौधे हमें फल फूल, यहां तक कि लकड़ी और दवाइयां देते हैं। और पता है श्रोताओ, पशु पक्षी प्रकृति की सुंदरता को तो और बढ़ाते हैं। बरसात होने से धरती हमारी हरी भरी हो जाती है और वातावरण में ताजगी फैल जाती है। श्रोताओ, प्रकृति केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी तो शांति प्रदान करती है। जब हम किसी बगीचे में या पार्क में या जंगल या पहाड़ी स्थान पर जाते हैं ना, तो मन प्रसन्न होता है। और हम उन जगहों पर जाने के लिए तो जैसे एक साल पहले ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अब हर घर में, क्योंकि छुट्टियां आने वाली हैं बच्चों की, तो सभी घर में यही प्लानिंग चल रही है कि भाई कहाँ घूमा जाए। और घूमने के लिए हम सभी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता होती है। फिर हम प्रकृति का दोहन क्यों करते हैं? माना हम बहुत समझदार हैं, जी हां हम समझदार हैं, पर क्या प्रकृति का दोहन करके हम अपने आप को समझदार कह रहे हैं या कह सकते हैं? नहीं श्रोताओ, बिल्कुल नहीं। हमें और आपको मिलकर ही अपनी प्रकृति को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि

0: पेड़ तो प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। और पता है आपको, हम धरती का आभूषण भी पेड़ों को ही कहते हैं। पेड़ों के बिना तो श्रोताओं, पृथ्वी सूनी और जीवनहीन हो जाएगी। भाई, हमें ये जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन, वो हमें यही देते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमारी हवा शुद्ध कर देते हैं। बरसात जो आती है, उसमें भी तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। भाई श्रोताओं, वातावरण, बरसात, जहां अधिक पेड़ लगते हैं, अधिक पेड़ होते हैं, वहां का वातावरण बहुत अच्छा होता है, ठंडक होती है। बढ़ती हुई गर्मी में आजकल हम सब परेशान हैं। कभी देखा है, जहां जिस सड़क पर आप जा रहे हैं और दोनों ओर अधिक से अधिक पेड़ लगे हैं, श्रोताओं, आप वहां ठंडक महसूस करते हैं। जी जी हाँ, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उस जगह पर तापमान कम रहता है। फिर हम इनका महत्व को क्यों नहीं समझ रहे? भाई, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये अच्छी वर्षा का स्रोत है। हमारे जो खेतों में जो मिट्टी होती है, जो जंगलों में अच्छी मिट्टी होती है, जो भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, ऐसी मिट्टी को बहने से भी रोकते हैं। भाई, हमें फल फूल जो हम खाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई हम ये मौसमी फल खा रहे हैं, कौन देता है? हम अपने घर में साज सजावट के जो सामान यूज करते हैं, कौन देता है? ये पेड़ ही तो है। नीम, तुलसी और पीपल जैसे अगर हम पेड़ों की बात करें, तो ये तो औषधीय गुणों से भरपूर है। भाई, तो गर्मी के दिनों में पेड़ों की छाया लोगों को राहत देती है, जहां पक्षी भी अपने घर को बना लेते हैं। सोचना पड़ेगा, प्रकृति हमारे लिए क्या है? अगर हम इसको खो देंगे तो जीवन बचा पाएंगे? नहीं।
1: पानी पिया करते हो?

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: तो श्रोताओ, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आज हम आपसे बातें कर रहे हैं अपनी प्रकृति और प्रकृति की धरोहर के बारे में। श्रोताओ, हम सभी जानते हैं कि धरती हमारी माँ है और हम जो भी लेते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, वे इस धरती माँ से ही मिलता है। चाहे वो अन्न हो, जल हो, खनिज हो, वनस्पति हो, प्राकृतिक संसाधन, सभी कुछ हमारी धरती माँ की ही देन है। किसान श्रोताओं, धरती माँ की गोद में बीज बोता है और वही बीज फसल बनकर हमें भोजन देता है। धरती माँ श्रोताओं, वैसे कहते हैं माँ तो वैसे भी सहनशील होती है, धरती माँ तो अत्यंत सहनशील है। मनुष्य यानी हम सभी उसके संसाधनों का लगातार उपयोग करते हैं, फिर भी

वे हमें सब कुछ देती रहती है। लेकिन आज हम सभी ने धरती का अत्यधिक शोषण शुरू कर दिया है। जी हां श्रोताओ, जंगल लगातार काटे जा रहे हैं, नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं और भूमि, जी हां, बंजर हो रही है। साथियों, अगर धरती मां स्वस्थ नहीं रहेगी तो मानव का जीवन भी संकट में ही पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपने जन्म देने वाली मां की रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, उसी प्रकार हमें पालने वाली मां यानी धरती मां, इसकी भी हमें रक्षा करनी होगी। इसका भी हमें दर्द समझना होगा। इसकी सुरक्षा के लिए हमें तैनात होना पड़ेगा। और शायद मां के लिए यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा।

श्रोताओ, कभी गौर करके देखा है कि अस्पतालों में किस हद तक भीड़ होती है? सुबह से लेकर रात तक, और जिस तरह के अस्पताल में आप पहुंच जाएंगे उसी तरह के मरीज आपको वहां बहुत सारे मिलेंगे। और एक चीज और, आज अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैं तनाव में हूं। इस सब का कारण क्या है, समझ रहे होंगे श्रोतो? इस सभी का कारण है पर्यावरण प्रदूषण, जो आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। और ये प्रदूषण हमारी ही देन है,

बढ़ते उद्योग, गाड़ियों का धुआं, प्लास्टिक का हम बहुत उपयोग कर रहे हैं और पेड़ों की कटाई, इस सब ने वातावरण को दूषित कर दिया है। और इसी के कारण आज जो बीमारी देखी जाती है लोगों में, सांस संबंधी बीमारियां बहुत हैं। ध्वनि प्रदूषण से श्रोताओं मानसिक तनाव को लगातार बढ़ावा दे रहा है। पानी दूषित हो गया इसलिए पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं। पेड़ों की अंधाधुंध जो हमने कटाई की है ना, उससे तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमखंड पिघल रहे हैं और मौसम चक्र तो श्रोताओं कभी भी मौसम एकदम अच्छा हो जाता है तो कभी एकदम से गर्म, सब बदल रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति का ही असंतुलन का परिणाम है। हम जो दे रहे हैं वही तो प्रकृति हमें वापस करेगी। और फिर कब तक सहेगी भाई? धरती भी कब तक सहेगी, प्रकृति कब तक सहेगी? जब उसका क्रोध ऊपर जाता है ना, तब फिर सुनामी जैसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। तो इस सब के लिए श्रोताओं हमें ही सोचना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी हमें अपने उन आदतों पर जो हमारे अंदर आ गई हैं और उसी कारण हम ये सब कर रहे हैं। श्रोताओं वैसे भी भारतीय संस्कृति में हम अपनी प्रकृति को देवतुल्य मानते हैं। हमारे देश में नदियों को माता कहा जाता है, पेड़ों की पूजा की जाती है, उन्हें पवित्र माना जाता है। और पुराने समय में तो ऋषि मुनि जंगलों में रहकर ही प्रकृति के बीच तपस्या करते थे, तो वे तो प्रकृति को ईश्वर का ही स्वरूप मानते थे। वैसे भी हमारे त्योहार बहुत सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम प्रकृति से दूर क्यों, हम इसका दोहन क्यों कर रहे हैं? श्रोताओ हमारी संस्कृति का भी शायद यही संदेश है कि प्रकृति का सम्मान करो और उसके साथ संतुलन बनाकर जियो, क्योंकि ये प्रकृति देने वाला भी वही भगवान है जिसने ये हमारे लिए सुंदर धरती रची है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। श्रोताओ, एक आवाज आप इसमें सुनेंगे अलका याग्निक की और उनका साथ देंगे और गायक। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म धड़कन का गीत, जिसमें अलका याग्निक के साथ दूसरी आवाज है उदित नारायण की।

श्रोताओ, धड़कन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत के बोल थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म चरणों की सौगंध से ये गीत।

श्रोताओं, मुलाकात फिल्म के लिए ये आवाजें थी अलका याग्निक और अभिजीत की। गीत के बोल थे वीनू महेंद्र के, संगीत था बप्पी लहरी का। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में फिल्म आरजू से ये गीत।

और साथियों के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं कुछ और गीत।

श्रोताओं, ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म थी जानवर। गीत के बोलते हसरत जयपुरी के, संगीत था शंकर जयकिशन का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में फिल्म सुहागन का ये गीत।

0: समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए फिल्म आसरा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध।

0: CBI lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुताल्लिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने को भी मंजूरी दी है। CBI ने नीट UG 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम ने मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद BJP के वज़रा आला और दीगर रहनुमाओं ने भी अखराजात को कम करने से मुताल्लिक इकदाम किए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भर्ती के सिलसिले में घपलों की तहकीकात CBI को सौंपने का फैसला किया है। उसने जरूरी सामान की नकलो हमल पर सभी बैन रियासती पाबंदियां खत्म कर दी हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इक्तसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा फसलों के अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज्यादा 622 रुपये फी क्विंटल कम अज कम इमदादी कीमत की तजवीज पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपये फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये फी क्विंटल की तजवीज है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मैट्रिक टन LMT।
1: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ रुपए के खराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ रुपए की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकत दारी के तहत निजी शराकत दार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीनकारी की मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तलात नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है। इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट

0: लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी। मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए जरी पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संगे मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतादिद दिगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतादिद काबिल एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB George ने मुत्तला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अक्वामी मामलात के साथ साथ खासतौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो UAE पहुंचेंगे, जहां वो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नजीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद BJP के कई वज़रा आला और दिगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाजे के दौरान वजीर आजम ने इतवार को आवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और जरे मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में BJP की कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि आवाम ने तरक्की और

0: बेहतर हुक्मरानी की पॉलिसियों पर अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि यह कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के आवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने बीजेपी की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक टीएमसी हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल बीजेपी ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए घोटाले के मामलों को मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI के हवाले करने का फैसला किया है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज TMC हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने बदउनवान अफसरों को तहफ़ फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजमत भी खत्म कर दी है जिन्हें TMC हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत दी थी। आसाम हुकूमत इस माह की 26 तारीख को रियासती असम्बली में यकसां सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा ने नई मुद्दत कार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असम्बली का खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी। मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। CBI ने नीट UG 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है जिसके बाद BJP के वज़ीर आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स आनंद।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों

0: दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी SPR की भी चर्चा होती है, और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
2: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up

0: our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब

0: था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला। कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना

0: है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में

0: कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडाउमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है, और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहे, तो
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, क्वाड के मेंबर हैं, और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है।

0: और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है उत्पादन है उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है जो हमारा विकास उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध है तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक है, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है पॉलिटिकल लीडरशिप है
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खास तौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट हैं, तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है, चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार। भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुत करता है अनिंद्र सिंह।

0: हेलो मेरी पसंद, सभी सुनने वालों को आपके रेडियो साथी सूर्य का नमस्कार। हेलो मेरी पसंद जो आपका अपना कार्यक्रम है, आपकी ही सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं और आपकी ही फरमाइशों पर ये आधारित है, जिससे हम सुनते हैं आपकी दिल की बातें और सुनवाते हैं आपकी ही फरमाइश के गीतों को। तो देर ना करते हुए अब लेते हैं आज की पहली कॉल।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। और कहाँ से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं मैडम?
2: मैं राजा मंडी से मीनू बोल रही हूँ।
1: अच्छा, हमारे इस कार्यक्रम में आपने आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया है?
3: ये हवा ये चांदनी फिल्म संग दिल का गीत सुनना चाहती हूँ।
1: अच्छा, हम ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है सर
0: नमस्ते सर।
1: जी। नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
0: राम लखन बोल रहे हैं औरैया से। बहुत दिनों से फोन ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन आप जाके लगो।
1: बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए हमें फोन किया है?
0: गीत तो सर वो सुनवा रहे हो, सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा।
1: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत है। इतने दिनों बाद आपकी आवाज हमने सुनी, दिल से बहुत अच्छा लगा।
0: सबकी फरमाइश है, कहाँ पूरी 1 घंटा कर दे सर जाए।
1: 1 घंटा? अच्छा, तो आपकी इस बात को हम ऊपर जरूर रखेंगे उच्च अधिकारियों से।

0: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार। हेलो, मेरी
0: नमस्कार,
1: पसंद
0: धन्यवाद।
1: में आपका स्वागत है। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं सर?
0: सर, मेरा नाम कुणाल सिंह है, मैं राजपुचूंगी आगरा से बोल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
0: धन्यवाद
1: और
0: सर।
1: कैसे हैं आप?
0: सर मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भी। और आज इस कार्यक्रम में आपने कौन सा गीत सुनने के लिए फ़ोन किया है?
0: सर मैंने सुनने के लिए फोन किया है यार रूठे ना, फिल्म का नाम है यारियां।
1: अच्छा, हम ज़रूर सुनवाएंगे। और आप क्या करते हैं?
0: सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर।
1: अच्छा, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
0: सर मैं MSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ।
1: बहुत बढ़िया। और आगे आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं?
0: सर मैं आगे सिविल सर्विस की ज्वाइन करना चाहता हूँ सर।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आपके जो भी लक्ष्य हैं वो आप ज़रूर पाएं, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है।
0: धन्यवाद सर।
1: और जो गीत आप सुनना चाहते हैं वो किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: सर मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो गीत आपने फरमाइश की है वो हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए, सुनिए।
0: धन्यवाद सर।

0: कैसे?
1: नमस्कार, हेलो, मेरी पसंद में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं मैडम?
0: जी, सर, मेरा नाम गोभी है, मैं शमशाबाद से बात करती हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और कैसी हैं आप?
0: बढ़िया सर, बस
1: स्वस्थ हैं?
0: आपके गाने सुनते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: आकाशवाणी आगरा सुनती हैं आप?
0: जरूर। ओ
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप आकाशवाणी आगरा सुनती हैं। रोज सुनती हैं मैडम?
0: जी, रोज सुनते हैं
1: कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
0: हम, सारे गाने के तो सारे ही कार्यक्रम सुनते हैं
1: अच्छा, ओके।
0: जी।
1: और आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: आज मैं सुनना चाहूंगी, फिर तो ऐसी मुझे कोई अभी याद नहीं आ रही, आप
1: अच्छा,
0: कोई एक अच्छा सा कोई गाना जो भी आपको पसंद है वो लगा दीजिएगा।
1: बिल्कुल, गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और आप करती क्या हैं?
0: अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ,
1: अच्छा,
0: ग्रेजुएशन
1: स्टूडेंट
0: चल
1: हैं।
0: रहा है मेरा,
1: अच्छा, आगे क्या करना चाहती हैं?
0: आगे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, फिर देखते हैं कि अगर लॉ की तैयारी फैमिली करा देती है तो लॉ की तैयारी करेंगे, नहीं तो कोई अच्छी जॉब देखेंगे।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप अपने जो भी आपने लक्ष्य तय कर रखे हैं, उन लक्ष्यों को आप जरूर पाएं, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है।
0: धन्यवाद सर,
1: आपने आज इस कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।

0: हाँ जी
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है।
0: बिल्कुल धन्यवाद।
1: कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं सर?
0: मैं इटावा से बोल रहा हूँ सर, गांव
1: अच्छा,
0: छितौनी से।
1: क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम सीएम यादव नाम है।
1: अच्छा, क्या करते हैं आप?
0: अभी तो फिलहाल फ्री बैठा हूँ, ठंडी हवा
1: अच्छा
0: ले रहा हूँ, पेड़ों की छाया बढ़िया
1: अच्छा
0: में
1: अच्छा
0: बस।
1: अच्छा
0: जी
1: और काम क्या करते हैं?
0: काम अपना बस होटल पे है। हाँ
1: ठीक
0: जी,
1: है, अच्छा,
0: खाते अच्छे मस्त रहते हैं।
1: हाँ ठीक। आज आपने
0: ठीक।
1: इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनने के लिए हमें फोन किया है?
0: दिल टूटा है तो राजा हिंदुस्तानी का बढ़िया मूवी कोई सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल
1: अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी फिल्म आपने बताई, और
0: बिल्कुल
1: हम इस गीत को आपको जरूर सुनवाएंगे।
0: जी,
1: और
0: बिल्कुल
1: आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस माध्यम से श्रोताओं तक?
0: बिल्कुल। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया फीलिंग्स आती है सुन सुन के।
1: अच्छा,
0: जी बिल्कुल
1: आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन किया, उसके
0: बिल्कुल
1: लिए आपको धन्यवाद। इसी तरह
0: धन्यवाद।
1: से आगे भी आप फोन करते रहिएगा और हम
0: बिल्कुल
1: आपको गीत
0: बिल्कुल
1: सुनवाते
0: जरूर।
1: रहेंगे। तो लीजिए सुनिए, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत आप ही
0: ओके
1: की
0: ठीक।
1: फरमाइश का।

0: और दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इस प्रोग्राम के निर्माता, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता और कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिंद्र सिंह जी का ये संदेश।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
0: और इसी संदेश के साथ आपके अपने रेडियो साथी सूर्य को इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुतकर्ता थे अनेंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:31 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित विदुर मलिक का

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित विदुर मल्लिक का राग कलावती में गाया धमार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर

0: मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad-Sarkhej-Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel.